मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की

तीसरी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में

0: 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी हिंदी समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये देश गान। शब्द रचना है द्वारिका दत्त की।

कार्यक्रम आराधना में लीजिए प्रस्तुत है तृप्ति शाक्या के स्वर में ये प्यारा सा भजन। धुन दिया है धनंजय मिश्रा ने और शब्द रचना है बेदाम जलालाबादी की।

श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला भजन मूसा पैक के स्वर में। संगीत निर्देशन है सुरेंद्र कोहली का, शब्द रचना है उदय शंकर पानी की।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए प्रस्तुत है हरिहरण के स्वर में ये प्यारा सा भजन। धुन दिया है सुरेंद्र कोहली ने, गीत लिखा है उदय शंकर पानी ने।

इस भजन के साथ ही कार्यक्रम भजन कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेब और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब ऐसे कार्यक्रम प्रकाश किरण, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुकेश के गाए इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी रायपुर है, धर्म ग्रंथों से पाठ। इसमें सुनिए ऋग्वेद से अग्नि सूक्त पाठ।
1: भारतीय धार्मिक जगत में अग्नि का विशेष तथा आदरणीय स्थान है। विवाह आदि के अनेक धार्मिक कार्य अग्नि के साक्ष्य में ही किए जाते हैं। प्राचीनतम भारतीय साहित्य ऋग्वेद में सर्वप्रथम जिस देवता की स्तुति की गई है वह अग्नि ही है। भारतीय मान्यता है कि दैवी संसार और मानवीय जगत के बीच मध्यस्थता और

सूत्र का कार्य अग्नि के द्वारा ही किया जाता है। ऋग्वेद के इस अग्नि सूक्त में अग्निदेव की विविध विशेषणों से स्तुति की गई है। अग्नि मानवों का सखा व रक्षक है, वह महान दानी है और मानव के गृहस्थ जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। सूक्त में ऋषि मधुछंदा ने अग्निदेव से प्रार्थना की है कि वह पिता की भांति उसका कल्याण करता रहे।

0: धर्म ग्रंथों से पाठ में अभी आप सुन रही थी ऋग्वेद से अग्नि सूक्त का पाठ। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है रविंद्र साठे का और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश

होता है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर था रविंद्र साठे का और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई।
1: किसान भाई, आज हम बातचीत करेंगे खेती की बात में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई उत्पादन में किस तरह से लाभकारी हो सकती है। कृषि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के अंडे लार्वा खेत की गहरी जुताई करने से भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े उनके अंडे एवं लार्वा गहरी जुताई के बाद अंदर काफ़ी गहराई में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका जीवन चक्र चलना असंभव हो जाता है। वे वहाँ के प्रतिकूल वातावरण एवं भोजन के अभाव में हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कीड़ों से आगामी फसल सुरक्षा पर कम व्यय होता है। कृषि फसलों में लगने वाले रोगों के रोगकारक प्रतिकूल परिस्थितियों में क्लेमाइडोस्पोर जैसे जटिल शारीरिक संरचना बनाकर सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं।

0: और अनुकूल परिस्थिति होने पर पुनः अपना जीवन चक्र प्रारंभ कर लेते, परंतु ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने पर रोग कारकों के कड़ी धूप के संपर्क में आने से उनके स्पोरों की जीवन क्षमता खत्म हो जाती है और वे आगामी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने पर एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय खरपतवारों के कंद एवं राइजोम मृदा के जड़ क्षेत्र से ऊपर आ जाते हैं, जो कड़ी धूप के प्रभाव से अपनी जीवन क्षमता खो बैठते हैं और अगली फसल में खरपतवारों की समस्या से निजात मिल जाता है। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने से मृदा में काफ़ी गहराई तक जल अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। वर्षा होने पर काफ़ी मात्रा में जल को अवशोषित करने से आगामी फसल को उचित नमी मिलती है। ऐसा देखा गया है कि खेतों में लगातार एक ही गहराई पर हल बखर खेत में जल के अंतः श्रावण में अवरोध पैदा करते हैं, परंतु गर्मी में गहरी जुताई करने पर यह कड़ी परत टूट जाती है, जिससे वर्षा का अतिरिक्त जल भूमि की अंतः संस्तरों में गमन करता है। परिणामस्वरूप भूमिगत जल के स्तर में सुधार होता है। इसके साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु का संचार बढ़ने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष खेत में पड़े रह जाते हैं। जैसे ही हम मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में दब जाते हैं तथा विघटित होकर काले भूरे रंग का ह्यूमस बनाते हैं, जो मृदा की भौतिक संरचना में सुधार करता है और मृदा में सूक्ष्म जीवों एवं पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने पर मृदा की जल शोषित करने की क्षमता में वृद्धि होने से खेत में वर्षा के समय जल के प्रवाह की गति में कमी आती है। वर्षा होने पर जल सीधा भूमि की निचली संस्तरों में गति कर जाता है, जिससे जल के कारण होने वाले भूमि कटाव में कमी आती है तथा मृदा क्षरण पर नियंत्रण होता है एवं खेत के पोषक तत्वों का बहाव भी रुक जाने से उसकी हानि नहीं होती। गहरी जुताई हेतु उपयोगी यंत्रों की बात करें तो इस कार्य को कृषक भाई बैल चलित अथवा ट्रैक्टर चलित मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ एवं डिस्क प्लाऊ का उपयोग कर सकते हैं। कृषक को जुताई कार्य फसल कटाई के तुरंत बाद कर लेना चाहिए, जिससे जुताई कार्य की अपेक्षित गहराई प्राप्त हो सके एवं मिट्टी की धूप लगने के लिए लंबी अवधि मिल जाए। वर्तमान में रिवर्सिबल प्लाउ का उपयोग प्रचलित है। इस प्लाउ के द्वारा कार्य करने से खेत के बीच में नाली नहीं बनती है। किसान भाई स्वयं के यंत्र गहरी जुताई हेतु क्रय कर सकते हैं, जिस पर शासन द्वारा विभिन्न अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। बैल चलित यंत्र पर कीमत का 25% अधिकतम 2,500 रुपये तथा कीमत का 25% अधिकतम 10,000 रुपये टॉपअप अनुदान प्रदान किया जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करते समय किसान भाई ध्यान रखें, खेत के ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करें, जिससे मृदा एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। खेतों में जहां पानी भरता हो वहां पर मिट्टी भराई का कार्य भी साथ साथ करते रहना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी उठी पथरीली है वहां पर खेती की जुताई अधिक गहराई से नहीं करना चाहिए, अन्यथा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत के भूमि की निचली तहों में जाने से खेत की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हर 2-3 वर्षों के अंतराल से करते रहना चाहिए। इस कार्य को संपूर्ण भूमि को 2 हिस्सों में बांटकर प्रतिवर्ष क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। गहरी जुताई के समय खेत के चारों ओर मेड़ बनाना भी लाभप्रद होता है, क्योंकि इसमें वर्षा का जल खेत में ही एकत्रित होने से मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों को अनावश्यक रूप से होने वाला बहाव भी रुक जाता है। ध्यान रखें किसान भाई, फसल काटने के बाद ही मिट्टी पलटने वाले हल से खेत गहरी जुताई कर लें। खेत की जुताई इस तरह करें कि खेत की मिट्टी भुरभुरी न होकर बड़े बड़े ढेलों के रूप में रहे, ताकि गर्म हवा जमीन में अधिक गहराई तक जा सके। ढेलेदार खेत होने से वह वर्षा का पानी भी सही तरीके से जमीन में अवशोषित कर सकेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। समय सुझाव का विषय था ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको आज के मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गूंजन जंगल और साथ ही कार्यक्रम गोधुली आप सुन सकेंगे आज शाम 6:20 पर। भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर

0: विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी आप सुन सकेंगे प्रातः 7:10 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर और कार्यक्रम किस्सा कहानी आप सुन सकेंगे आज सुबह के ठीक 8:30 पर और 8:45 पर आप आनंद ले सकेंगे सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ का। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुन सकेंगे तय समय सुबह के ठीक 9 बजे और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने आप सुन सकेंगे सुबह के ठीक 10 बजे। श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद आप ले सकेंगे दिन के 11:05 पर। साथ ही मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग आप सुन सकेंगे दोपहर के ठीक 12 बजे। कार्यक्रम आप मन के गीत आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। साथ ही शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 पर। साथ ही युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर और ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे दोपहर 1:40 और रात्रि 9:30 पर। साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर और सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का आनंद आप ले सकेंगे शाम 7:05 पर। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:05 पर। साथ ही कार्यक्रम कानून की बात आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया की गूंज इच्छा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 8 बजे और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुन सकेंगे आज रात्रि 10 बजे जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार। श्रोताओं ये थे हमारे आज के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सह प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण

0: राजनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयल व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्ष पर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी सञ्चेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7-दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7 हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं बाबूदास मानिकपुरी और साथियों के स्वर में भुईहारी गीत।
2: झापुली

देवी भजन के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गुंजे जंगल यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: कार्यक्रमों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं और खासकर छत्तीसगढ़ी फरमाइशी कार्यक्रम में सुनने वालों को यूं लगता था कि कब उनकी आवाज इस कार्यक्रम में सुनाई देगी और उनकी आवाज का हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा करता था। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा। श्याम भैया, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
0: श्याम जी, आकाशवाणी से आपका जो जुड़ाव रहा है, उस यात्रा की कहानी भी बड़ी पुरानी है, तो सबसे पहले हम उस कहानी की शुरुआत की ओर जाना चाहेंगे कि रेडियो से आपका जो जुड़ाव है वो आकाशवाणी में आने से पहले किस तरह का रहा है।
1: आकाशवाणी में आने से पहले असली में क्या है कि उस जमाने में हमारे यहाँ घर में शुरू से रेडियो था, तो उस समय हम लोग बीबीसी लंदन सुना करते थे।
0: उस समय आपकी उम्र क्या रही?
1: करीबन मैं तो 11वीं पढ़ता था, तो वही 17-18 साल की उम्र रही है। तो उस समय हम लोग बीबीसी लंदन इसलिए सुनते थे कि हमारे गाँव में पास में एक हाई स्कूल है 1962 से, तो सभी पढ़े लिखे थे, तो गाँव का कल्चर भी अच्छा था, वहाँ पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता था, जो मेरा गांव है। तो उस जमाने में मैं बीबीसी लंदन सुन के नोट्स बनाया करता था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो फिर उस समय रुझान धीरे धीरे फिर आकाशवाणी रायपुर की ओर बढ़ा और यहाँ का बहुत ही मशहूर कार्यक्रम युववाणी, तो उससे हम लोग युवा थे तो प्रेरित हुआ करते थे, तो युववाणी सुने। फिर उसके बाद सूर श्रृंगार कार्यक्रम 1 घंटे का आता था
0: जी,
1: तो उसके भी हम लोग दीवाने हो गए, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हूँ, तो संगीत में भी सुर श्रृंगार के कुछ गीत हम लोग गाते थे। तो धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा एक भतीजा समझिए या दोस्त, वो आकाशवाणी में ईए के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। अब उस समय हम लोग ग्रेजुएट हो गए थे, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, आप तो जगदलपुर आपका पोस्टिंग हो गया, तो उसने बताया कि आकाशवाणी में नैमित्तिक उद्घोषक का जो पद है वो निकलता है, आप भरिए। तो ये बात है सन 1987। तो फिर रेडियो तो सुनता था, तो धीरे धीरे फिर रेडियो सुन के, जैसे लाल राम कुमार सिंह जी हैं, किशन गंगेले हैं, मिर्ज़ा मसूद जी हैं, उस समय के मशहूर उद्घोषक हुआ करते थे, तो हम लोग नकल करते थे कि ये कैसे बोलते हैं। तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर मेरे भतीजे ने कहा भर दो, तो फिर मैं रायपुर आया। फिर सन 1987 में एक कार्यक्रम आया करता था श्रमिक जगत और चौपाल, तो पहले हम लोग 6:40 को श्रमिक जगत करते थे और फिर उसके बाद 7:21 को चौपाल। तो धीरे धीरे हम लोग फिर यहाँ मेरा वो उस समय चयन हो गया, इंटरव्यू दिया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे फिर रुझान हुआ आकस्मिक उद्घोषक की ओर। उस समय क्या था, जैसे हम लोग केजुअल आते थे चौपाल कार्यक्रम में श्रमिक जगत में, उस समय के उद्घोषक जो होते थे, हम लोगों को कंसोल जिस दिन ड्यूटी रहती थी बोले आओ कंसोल में बैठो, तो हम लोगों को उस समय से ही कंसोल ऑपरेट करते
0: थे। 87-88 की बात,
1: 87-88 की बात, 87 की बात है,
0: बहुत पुरानी।
1: और फिर 1988 में फिर इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम केजुअल अनाउंसर बन जाओ।
0: अच्छा।
1: तो कंसोल तो जानते ही थे, फिर केजुअल अनाउंसर 1988 से मैं नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में यहाँ काम किया।
0: 1988 से कौन से साल तक आप नैमित्तिक उद्घोषक?
1: मैं 1996 तक।
0: 96 तक,
1: जी जी जी।
0: फिर उसके बाद आप जब परमानेंट हुए, तो हमने सुना है कि आकाशवाणी रायपुर के किसी अन्य आकाशवाणी केंद्र में आप परमानेंट हुए थे, कौन से?
1: मैं सन 1996 नवंबर में मध्य प्रदेश के आकाशवाणी शहडोल में मेरी पहली पोस्टिंग थी। और शहडोल का एक मज़ेदार किस्सा है कि जब मैं ज्वाइनिंग करने गया, तो एक दो दिन तो मैं देखते रहा कि मेरे को ड्यूटी कब देंगे, तो वहाँ ये था कि ये नया लड़का है और इसको अभी सिखाओ। तो वहाँ के जो कार्यक्रम प्रमुख थे श्री मंगल सिंह जी, उसने कहा कि अभी सीखो। मैंने कहा सर मैं नहीं सीखूँगा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। तो बोले कैसे जानते हो? मैंने कहा इतने साल तक मैं नैमित्तिक उद्घोषक था, तो मुझे कंसोल अनाउंसमेंट लिखना सब आता है, तो हम आपकी ड्यूटी कल लगा देते हैं। तो मेरी ड्यूटी लगी। और मज़ेदार देखिए कि उस

0: समय हमारे गुरु आकाशवाणी रायपुर के किशन गंगेले जी, लाल राम कुमार सिंह जी, मिर्जा मसूद जी, कमल शर्मा जी, इनकी जो आवाज़ थी और इनका जो प्रसारण करने का तरीका था उसको हमने अपनाया। और वहाँ मैं जैसे ही पहली बार अनाउंसमेंट किया तो एक वहाँ का डीओ हुआ करते थे, बाद में वो एएचडी होके रिटायर्ड हुए, वो दौड़ते आ गया, बोले यार क्या है आप तो दिल्ली के अनाउंसर लगते हैं। तो मैंने कहा ये दिल्ली के अनाउंसर नहीं, ये आकाशवाणी रायपुर की देन है।
1: क्या बात। तो श्याम जी, शहडोल में आप कितने साल रहे?
0: मैं शहडोल में नवंबर 1996 से नवंबर 1999 तक रहा।
1: तीन साल रहा वहाँ पर। फिर शहडोल के बाद आप रायपुर आ गए। तो वे श्याम वर्मा जो आकाशवाणी रायपुर में करीब 8 साल तक नैमित्तिक उद्घोषक थे, वे श्याम वर्मा एक परमानेंट अनाउंसर बनकर जब आकाशवाणी रायपुर आए तो उसके बाद यहाँ का वातावरण कैसा था? फिर कौन कौन से कार्यक्रम आपको मिले?
0: यहाँ का वातावरण तो वो हमारे जितने सीनियर थे वो समझते थे हमारे बीच का ही बंदा है। तो मैं आकाशवाणी रायपुर में आया तो सबसे पहले तो मुझे चौपाल कार्यक्रम दिया गया। उस समय हमारे केंद्र निदेशक हसन खान जी हुआ करते थे, चौपाल दिया। फिर धीरे धीरे मेरा जुड़ाव हुआ, फिर अनाउंसमेंट भी करता था साथ में, अनाउंसमेंट के साथ डीओ की ड्यूटी करना होता था। फिर धीरे धीरे मुझे एक लोकप्रिय कार्यक्रम राज्य बनने के बाद शुरू हुआ, उसका नाम है मोर भुइयां।
1: जी।
0: तो उस समय गोवर्धन देवांगन जी देखा करते थे, फिर मुझे भी वहाँ अटैच कर दिया गया। फिर उस कार्यक्रम को धीरे धीरे करते करते फिर मुझे युवाणी छत्तीसगढ़ी में जोड़ा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, उस समय क्या है, युवाणी छत्तीसगढ़ी भी दिखता था
1: जी,
0: चौपाल तो देखता ही था। फिर एक लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था नगर दर्पण, तो मेरी रोड ड्यूटी लगती थी, मैं रिकॉर्डिंग करने जहाँ भी जो जो आयोजन छत्तीसगढ़ शासन का या साहित्यिक कार्यक्रम या संगीत कार्यक्रम सभी में मुझे भेजा जाता था, वो कार्यक्रम मैंने किया। उसके बाद फिर कहा यार ये तो छत्तीसगढ़ ही जानता है, क्यों ना इसको आपमन के गीत और सुर श्रृंगार दे दिया जाए
1: जी।
0: तो आकाशवाणी रायपुर में रहते रहते मैं आपमन के गीत और सुर श्रृंगार कार्यक्रम बहुत किया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मोर भुइयां अलग अलग स्वरूप में आने लगा। एक समय ऐसा था कि एक नाचा कार्यक्रम का हम लोग नाचा कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते थे, उस समय महेश मिश्रा जी हुआ करते थे
1: जी।
0: तो मुझे यही कि ये लड़का छत्तीसगढ़ ही जानता है, इनको मिश्रा जी के साथ लगा दीजिए। तो उस ज़माने में हम लोगों ने नाचा का जो नाचा की रिकॉर्डिंग पहली बार आकाशवाणी रायपुर से हम लोगों ने जो किया वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। फिर धीरे धीरे हर कार्यक्रमों में, क्योंकि यहाँ आकाशवाणी में तो कोई छुट्टी अगर ले लिया तो आप इसका कार्यक्रम देखिए, तो ऐसे करके सारा कार्यक्रम मैंने, गांधी चर्चा भी मैंने किया, गांधी चर्चा की रिकॉर्डिंग बहुत लंबे अरसे तक गांधी चर्चा देखा। और ये क्या है, इंटरेस्ट की बात है
1: जी,
0: अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत सारा कार्यक्रम करने को मिला। फिर मैं सबसे ज़्यादा किया हूँ बाहर की रिकॉर्डिंग,
1: ओ भी
0: कार्यक्रम
1: जी,
0: जिसमें संगीत कार्यक्रम एक रात को हुआ करता था, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो कार्यक्रम हम लोग गांव-गांव में जाके करते थे। फिर युवाणी गांव में ये कार्यक्रम मैंने लगातार किया, ये कार्यक्रम लगभग सन 2022 तक मैंने किया। तो इसी का प्रतिसाद है कि कलाकार लोग मुझे जानते हैं। उसके बाद आकाशवाणी रायपुर में लोक संगीत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में कलाकार लोग आते थे, फिर रिकॉर्डिंग में बेचारे बैठे रहते थे, तो मुझे हमारे पेक से समीर जी बोलते थे यार रिकॉर्डिंग कर दो, तो मैंने लोक रंजनी का, लोक संगीत का बहुत रिकॉर्डिंग किया।
1: अच्छा श्याम जी, आप जब युवाणी गांव में या इस तरह के जो कार्यक्रम स्थल ध्वनिंकन पर आधारित हुआ करते थे उनकी रिकॉर्डिंग के लिए आप गांव-गांव जाते थे,
0: जी
1: आपके साथ में माइक तो एक ही हुआ करता था, और इतने सारे बजाने वाले गाने वाले जब बैठते थे तो एक माइक में किस तरह से आप सेट करते थे उसके बारे में कुछ?
0: दीपक जी देखिए, एक अनाउंसर होता है वो आवाज़ से नहीं, उसका मन मस्तिष्क कहता है कि यार इसको यहाँ बिठाऊँ, इसको यहाँ बिठाऊँ, इसको यहाँ बिठाऊँ, फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एक अनाउंसर को माइक का जो तजुर्बा है वो बहुत होता है, तो मैं वैसे ही करता था, मैं सुनता कम था, पहले उनको बिठा के सुनता था। अरे ये तो बढ़िया आ रहा है।

0: तो एक ये एक उद्घोषक या एक अच्छे प्रसारण जो करता है ये उनके ऊपर है। तो मैं अक्सर पहले आँख से देख लेता था कि जगह कैसी है, कहाँ कौन बैठे। तो एक
1: मतलब ये बड़े कमाल की बात होती थी
0: जी जी
1: कि आज के दौर में तो इतने सारे माइक्रोफोन होते हैं, ट्रैक में अलग अलग रिकॉर्डिंग की जाती है और ये सारी रिकॉर्डिंग आप एक साथ करते थे और एक माइक से करते थे
0: जी,
1: जिसमें गाने वाले भी दो हुआ करते थे, हारमोनियम भी साथ में हुआ करता था, बांसुरी भी, मंजीरा भी हुआ करता था, ढोलक भी हुआ करता था, तबला भी हुआ करता था। तो इस तरह से सारे साजों की और गायक कलाकारों के साथ एक माइक्रोफोन में आप रिकॉर्डिंग किया करते
0: जी, जी, जी, जी।
1: और उसकी बैलेंसिंग भी बड़ी गजब की हुआ करती थी।
0: ये कमाल हमारे यहाँ मेल्ट्रॉन जो मशीन है
1: जी
0: उसी का ही है, क्योंकि जहाँ तक मैं सुना हूँ सुर सिंगार के जितने भी गीत हैं सब बाहर की रिकॉर्डिंग है
1: जी जी।
0: तो उसमें एक अद्भुत मशीन है वो, सब आवाज़ वो खींच लेती थी, चाहे वो गाने वाले का हो, हारमोनियम का हो। और हम लोगों का बिठाने का भी एक कला है
1: जी,
0: कि उनको गोल बिठा देते थे, बीच में माइक रखते थे तो वो अच्छी रिकॉर्डिंग होती
1: जी,
0: थी
1: जी जी, जी। श्याम जी, आपने आकाशवाणी रायपुर में बहुत से नाटकों में और पारिवारिक धारावाहिक में भी काम किया है, तो
0: जी,
1: उसके बारे में अपने अनुभव बताएं।
0: जी अजीत सुनिए और नाटकों में, ये तो असली में मैं देखा, एक समय की बात है जब मैं नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आता था
1: जी,
0: मिर्जा मसूद जी उस समय एक नाटक कर रहे थे और उनको रेलवे में जो अनाउंसमेंट जो करते हैं ना, रेलवे का अनाउंसमेंट
1: जी,
0: उनके लिए एक आवाज़ की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जितने भी कलाकार थे जो अप डाउन करते थे रेल से, बहुत कलाकारों को बुलाया तो जमा नहीं। तो मिर्जा भैया एक बोले कि यार ये श्याम भी तो ट्रेन से सफ़र करता है। तो मुझे मिर्जा मसूद जी ने जो अनाउंसमेंट रेलवे का
1: अच्छा,
0: आने जाने का अनाउंसमेंट दिया, मेरे लिए अद्भुत है। और मैं मिर्जा मसूद जी को इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक पारखी निर्देशक हैं, उनको कैसी आवाज़ चाहिए, कौन चाहिए, ये मैं उस नाटक में देखा। और आपने बीच में कहा अजीत सुनिए कार्यक्रम
1: जी,
0: तो अजीत सुनिए कार्यक्रम में आपने भी खूब रोल निभाया, तो मैं भी बहुत दिनों तक अजीत सुनिए ये कार्यक्रम किया। दरअसल मैं देखा हूँ कि निर्देशक जो होते हैं वो उनके ऊपर है, किनको क्या लेना है, किनको क्या लेना है। जैसे मैंने बताया एक नाटक के बारे में, वैसे ही बहुत सारे नाटकों में हमारे जो जो जो नाटक के निर्देशक हुए हैं तो वो परखते थे कि किसमें किनको लेना है, किसमें किनको लेना है। तो ऐसे करके मैं बहुत सारा नाटक है उसमें काम किया। एक नाटक था उसमें एक राजा का रोल किया था, मैं आज भी सुनता हूँ तो लगता है यार उस ज़माने में हमारी आवाज़ कैसी थी, क्योंकि उस समय हम लोग नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आते थे
1: जी।
0: तो ये आकाशवाणी रायपुर का ही देन है कि उन्होंने हमें सिखाया।
1: श्याम जी, आपने आकाशवाणी रायपुर के बहुत सारे लोकप्रिय कार्यक्रमों को लगातार किया है
0: जी,
1: खासकर फरमाइशी कार्यक्रमों की अगर हम बात करें और फरमाइशी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले श्याम वर्मा जी को छत्तीसगढ़ के कोने कोने के श्रोता बहुत प्यार भी करते थे
0: जी, जी।
1: जानते भी थे, मानते भी थे। आप जब यहाँ से निकल कर किसी गांव में, सुदूर गांव में जाते थे और लोगों को जब पता चलता था कि श्याम वर्मा जी आए हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह का माहौल आपको वहां का मिलता
0: जी, ये तो बड़ा ही एक प्रसारक और एक जो श्रोता हैं इनके बीच का जो रिश्ता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन गांव जाओ तो ऐसे स्वागत करते थे, नहीं भैया आपको खा के जाना है भैया, नहीं भैया ऐसा है भैया। तो वहाँ ये पता चलता था कि 10 किलोमीटर के जो श्रोता हैं वो भी आते थे मिलने
1: जी जी।
0: तो श्रोताओं का प्यार तो बहुत मिलता है, और ये चाहे आप आकाशवाणी में रहें या आकाशवाणी से आप रिटायर्ड भी हो गए, फिर भी उनका प्यार आपके प्रति वैसे ही रहता है। कारण ये है कि हम लंबे समय तक जिस संस्था में थे, लोग जो बोलते हैं कई बार कि नहीं रिटायर्ड होने के बाद श्रोता से कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं, श्रोता आज भी उतना ही प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो श्रोता हैं, ये श्रोता तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के श्रोताओं से भी मेरा उतना ही जुड़ाव है और छत्तीसगढ़ के श्रोताओं की तो बात ही

0: अलग है, और इसी के चलते श्रोताओं का जो एकजुटता हमें दिखता है ना
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: आपने तो बहुत सारे श्रोता सम्मेलन भी अटेंड किए हैं।
0: जी जी जी।
1: तो उन सम्मेलनों का कोई खास अनुभव आपको याद आ रहा होगा?
0: मैं अभी 4 बड़े बड़े श्रोताओं का सम्मेलन, पटियाला गया था मैं, बागपत गया, बुलढाणा, ये 3 जगह मेरा जाना हुआ। वो तो जो श्रोता हैं वो तो ऐसा हाथों हाथ लेते हैं उद्घोषक को कि पूछे मत। लेकिन एक चीज़ है, लोगों को लगता है कि रेडियो के श्रोता वही कुछ वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेडियो में एक बड़े उद्योगपति भी जुड़ा हुआ है, एक वैज्ञानिक भी जुड़ा हुआ है, और एक शिक्षाविद भी जुड़ा रहता है। तो जब वहाँ जाते हैं ना, तब वो जब ये मिलते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार, हम रेडियो में हालांकि काम करते हैं, लेकिन ये जो श्रोता वर्ग हैं कितने बड़े बड़े लोग हैं, समय निकाल के कैसे रेडियो सुनते हैं। और आप जैसे ही जाएंगे तो इतनी आत्मीयता से आपको, मैं तो अभी जहाँ जहाँ गया हूँ ना, तो वो तो ऑटोग्राफ के लिए उन लोग भी तरसते हैं अभी भी। लेकिन ये चीज़ मानना पड़ेगा कि इतने धनाढ्य होने के बाद भी श्रोता उस सम्मेलन में आते।
1: श्याम जी, जिस दिन आप आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए, वो तारीख कौन सी थी और उस दिन आपको कैसा लग रहा था?
0: 2022 के जनवरी के माह की अंतिम तारीख को मैं जब विदा हुआ, मुझे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि मेरा कहना है कि जिस संस्था में आपने काम किया, वो संस्था में रहते हुए भी आप उतना ही प्रेम करते थे, और जाने के बाद भी उस संस्था को उतना ही सम्मान दीजिए। एक संस्था के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि हम उस संस्था को मरते दम तक न भूलें। आकाशवाणी रायपुर को इसलिए बहुत बड़ा मानता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े प्रसारक हुए हैं जो दिल्ली तक गए हैं, और यहाँ के कार्यक्रमों का जो नाम उन्होंने दिया, आज भारत के बहुत से स्टेशनों में ऐसा लगता है कि आकाशवाणी रायपुर से लिया गया कार्यक्रम का नाम।
1: श्याम जी, अभी सेवानिवृत्ति के बाद आपका समय किस तरह से कट रहा है?
0: दरअसल सेवानिवृत्ति के बाद एक तो मुझे बचपन से आदत है 3:30 बजे उठने की, फिर सुबह घूमता हूँ, घर का जो काम है वो करता हूँ, और मेरे लिए मेरे बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा संपत्ति दिया है, वो है संगीत का। क्योंकि मेरे बड़े भैया स्वर्गीय प्रेमलाल वर्मा जी बड़ोदरा घराने के, हालांकि हम लोगों ने पूरे परिवार संगीत में रमे हुए हैं, हम लोगों ने सीखा नहीं क्योंकि उनको डरते थे, लेकिन उनके दिए हुए संगीत का भी हम लोग आनंद उठाते हैं। मैं हारमोनियम बजाता हूँ और गाता हूँ, और सबसे बड़ी बात है तो हमारा पोता आ गया है, तो वो उनको पूरा समय देना पड़ता, समय का पता ही नहीं चलता, और फिर शाम को यार दोस्तों के यहाँ बैठना होता है। और एक सेवानिवृत्त कोई भी हो, उनको सबसे वही संबंध बना के रखना चाहिए जो हमारा जब हम यहाँ काम करते थे उस समय का संबंध अभी काम आता है।
1: तो श्याम जी, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े स्वस्थ और फिट लग रहे हैं, आप यूं ही स्वस्थ रहें, फिट रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, और आकाशवाणी रायपुर की सुनहरी यादों के संग सदैव खुश रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय प्रसारण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है।

कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। सेना भर्ती 2027 ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE की तारीख घोषित, प्रवेश पत्र भी हुआ जारी। भारतीय सेना भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE की तारीख सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा घोषित की गई है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 1 जून 2026 से 5 जून 2026 तथा 8 जून 2026 से 12 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के कुल 10 परीक्षा केंद्रों में संपन्न होगी। परीक्षा प्रतिदिन 3 से 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय ने उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी करना प्रारंभ कर दिया है। अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiaarmy.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा निर्देश का गंभीरता से पालन करें तथा निर्धारित समय से पूर्व अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करें। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण हेतु उम्मीदवार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप स्थित सेना भर्ती कार्यालय नया रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965-212 एवं 0771-2965-214 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष है तथा चयन केवल उम्मीदवारों की योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाएगा। साथियों, ये सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा की पहली पेशकश फिल्म हिमालय की गोद में से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी, उषा और समूह के, संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का, सब दृश्य है आनंद बख्शी की।

प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 का मॉडल उत्तर जारी। 30 मई तक कर सकेंगे दावा आपत्ति। आदिवासी विकास विभाग ने जारी की सूचना। अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर देख सकते हैं मॉडल आंसर। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं सत्र 2026-27 प्रवेश परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जारी सूचना के अनुसार प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु 10 मई 2026 को आयोजित प्रवेश परीक्षा का मॉडल उत्तर विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/ पर जाकर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी सूचना में बताया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर के संबंध में कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी हो तो वह निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मई 2026 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दावा आपत्ति आवेदन जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के परीक्षार्थियों द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। बिना प्रमाण के प्रस्तुत दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य माना जाएगा। सूचना में यह भी कहा गया है कि प्राप्त दावा आपत्तियों का परीक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा तथा विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। डाक माध्यम से प्राप्त दावा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग ने अभ्यर्थियों एवं पालकों से समय सीमा के भीतर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने तथा विभागीय वेबसाइट पर जाकर जानकारी का अवलोकन करने की अपील की है। साथियों, ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म लोफर से। आवाज है मोहम्मद रफ़ी की, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

जौहर उत्कर्ष योजना 2026-27 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर। प्रवेश परीक्षा की समय सारणी जारी, कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू, 7 अगस्त को होगी परीक्षा। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विभाग मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली चयन परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी गई है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार विद्यार्थियों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से योग्य एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। विभाग ने परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देश, आवेदन प्रक्रिया एवं तिथियों की जानकारी जारी करते हुए विद्यार्थियों और पालकों से समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील की। 20 जून से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। जारी कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी 20 जून 2026 तक अपने आवेदन पत्र विद्यालय में जमा कर सकेंगे। इसके बाद विद्यालय प्रमुख द्वारा विद्यार्थियों के आवेदन संबंधी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संकुलवार आवेदनों की सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी। वहीं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय द्वारा राज्य कार्यालय को आवेदन संख्या जिला विकास खंडवार भेजी जाएगी। 24 जुलाई को जिला मुख्यालय में बांटे जाएंगे प्रवेश पत्र। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र 24 जुलाई 2026 को जिला मुख्यालय से वितरित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय से अधिकृत प्रतिनिधि प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे तथा नव रायपुर अटल नगर से उन्हें सुरक्षित तरीके से जिला मुख्यालय लाया जाएगा। 7 अगस्त को आयोजित होगी परीक्षा। जिला स्तर पर विकासखंड स्तर पर परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 27 जुलाई 2026 को जिला स्तर पर संकलित कर दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावा आपत्ति निराकरण की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद राज्य मुख्यालय द्वारा अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी तथा कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा 7 अगस्त 2026 शुक्रवार को आयोजित होगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना अलग से जारी की जाएगी। वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी पूरी जानकारी। आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in एवं जिला कार्यालय की वेबसाइट https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in/in/notice/category/requirement पर उपलब्ध रहेगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने तथा विभागीय दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म यह रात फिर ना आएगी से। आवाज़ है आशा भोसले, मीनू पुरुषोत्तम के। संगीतकार हैं ओपी नैयर, गीतकार हैं अजीज कश्मीरी।

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक हेतु 5 जून तक आवेदन आमंत्रित। खाद्य अधिकारी ने बताया कि अंबिकापुर के सतीपारा वार्ड में शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3910010053 का नवीन आवंटन किया जाना है। दुकान के संचालन हेतु इच्छुक पात्र एजेंसी से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक एजेंसी अपना आवेदन पत्र विहित प्रारूप में संपूर्ण विवरण एवं दस्तावेज की सत्यापित छाया प्रति के साथ 5 जून 2026 तक कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में जमा कर सकते हैं। समय सीमा के बाद आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा की अंतिम पेशकश फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का, सब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

0: med Lavlin Nigam. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

0: और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
0: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल

0: किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल।

0: रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderbir Singh wins men's 100 meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared

0: covered by most of the newspapers. PM backs peace push with renewed push to repair ties in meeting with Rubio is a front page headline in Hindustan Times, while the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary tows U.S. oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-U.S. talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, a Sunday Pioneer headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Jiramji replacing the 20-year-old MG Narega set to come into effect from 1st of July with draft rules open for feedback till 3rd week of June under the headline Big Poor States to get higher funds under government's new rural job scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for US immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only 6 states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik DCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinder Veer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किस्सा कहानी। संकलन एवं लेखन है श्री रामचंद्र सोनी का, संयोजक है नागेंद्र दुबे, प्रस्तुतकर्ता है शोभना साहू और प्रतिभागी हैं मृदुल गुप्ता, शोभना साहू, कमलेश सिंह।
3: लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी बुढ़िया कर मुर्गा। संकलन व लेखन रामचंद्र प्रसाद सोनी का है, संयोजक हैं नागेंद्र दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं शोभना साहू।
4: एक निर्धन अनाथ बुढ़िया को एक अंडा मिल जाता है, जिसे वो घर ले जाकर टोकरी से ढककर रख देती है। वो अद्भुत अंडा आश्चर्यजनक रूप से बड़ा होते जाता है। एक बार बुढ़िया जब उसे खोलकर देखती है तो अंडा मुर्गे के रूप में तब्दील हो जाए रहता है। वो मुर्गा बुढ़िया से मनुष्य ही की तरह बात करता है, उसके सभी काम करता है। एक दिन बुढ़िया की इच्छा अनुसार उसके लिए बहू लेने चला जाता है और एक राजकुमारी से विवाह कर घर ले आता है। दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। एक दिन राजकुमारी को पता चलता है कि उसका पति साधारण मुर्गा नहीं बल्कि एक सुंदर नौजवान है, जो दिन में मुर्गा और रात में मानव बन जाता है। सुबह वो सारी बात बुढ़िया को बता देती है। बुढ़िया के उपाय से मुर्गा मानव बन जाता है, सभी सुख से रहने लगते हैं। यही इस कहानी का सार है।
3: एगो गांव में गरीब बुढ़िया रहत रहिस, उखर कोनो नी रहिस। दिन भर बनी बुथी करे तो सांझ जुआर रांधे उखाए। बेचारी की जांगर थकत जात रहे, जोन दिन भूती कैर के लाने तो खाए, नहीं तो इसने खाली पानी पी के सूते रहे। वह रोज सूतत घनी भगवान शिव महादेव और पार्वती ला ध्यान करके कहे कि भगवान, मोर एको गोट लैका छुआ रहतीस तो बुढ़ापा के सहारा रहतीस।
4: एक दिन बुढ़िया

0: जंगल ले झूरी बीन की आत रहीस ता खेत के पायर धरी ए गुट अंडा भेटीस। मने मन कहीस,
1: अरे बार सुघर अंडा भेटी, आज सांजूर एही लबियारी रैन के खाहू।
0: ओला घरे पहुंचते पहुंचत अंधियार हुई किस। बुढ़िया के जांगर तो चलत नहीं रहे, ओकर मन रांधे बर असका साथ रहीस। अब बिहन्ने देखल जाही कही के अंडा लाए वो डूबा में रायक के पथिया में ढाक दहीस और ओढ़ना ओढ़ के चुपे चाप सुत गिस।
1: बिहान दिन घर बहारत घनी बुढ़िया हर पथिया ला उखार के देखिस तो का देखत हवे कि अंडा हर बाढ़ के जबर नोट हो जा रहे। बुढ़िया हर सोचिस एला फेर ले ढाई के रायक दो कुजिन सांजुआर ले आऊ बाढ़ जाही और ओला ढाई के खुशी खुशी बनी करे चल दहीस।
0: सांजुआर बुढ़िया घरे आईस ता ओखर मन एक धार फिर पथिया ला उघार के देखे बर होइस। उघार के देखिस ता अंडा हर बाढ़ के और रोट हो जाए रहे। ये देख के बुढ़िया कर जीव ढेरे फुल्ला होइस। बाकी वो अंडा में न जाने का मोहनी रहीस कि बुढ़िया कर जीव होइस एला फेर ले ढाँप के राख दहल जाए।
1: दूसर दिन बुढ़िया फेर ले बनी भूति करे बर जाए लगीस तब पथिया ला उघार के देखीस तो का देखत हवे कि एगो जबर रोट सुघर कस मुर्गा कोकरो को बासत बरी ही क्लीस। ये देख के बुढ़िया के जीव मारे खुशी के नी मारे लागिस। ओला कुरा में पाए के दुलारे लागिस और मने मन कहिस, मोर ते दुनिया में कोई नी हवे, मैं यही ला पाल पोस के अपन मन बहला हुआ बना हूँ।
0: ये सोच के मुर्गा के मूड ला सुहराए लागिस और कहिस,
1: ए बाबू मैं बनी करे बर जात हूँ ना, ते बढ़िया ले घर के तिहा कर भी।
0: और ये कह के जाए लागिस कि पाछू ले आवाज आईस,
2: ए दाई सुन तो कहाँ जात हस।
0: बुढ़िया हर अचकचाए के देखे लागिस कि कौन बोलत हवे।
2: मैं हूँ दाई, इते तो आ।
0: बुढ़िया हर पाछू घूम के देखिस कि ओकर मुर्गा हर मइनसे मन कस बोलत हवे, तुहर तो चकराए गिस।
2: सुन आज ले तैं कहूँ नी जाबे, तोर बदला में भूती करे बर मैं जाहूँ।
0: मुर्गा के एकस मीठ गोट सुन के बुढ़िया कर मन माया ले भैर गिस, कहिस,
1: तैं मुर्गा जात रे बेटा, बनी भूती करे बर कैसे जाबे, कोनो मार मुरी के खाय देही तो मैं का कर ले हूँ बता तो।
2: तैं फिकिर झीन कर दाई, मोला कहीं नहीं होए, तैं घर दूरा कोठी भाड़ी मनला बहार मांझली पोत के राखे रहबे, मैं सांजुआ रहूँ।
0: और यही कह के मुर्गा हर बनी करे बर चल दहीस। चलत चलत एगोट खेते पहुँचिस जे जी ढेरे बनिहार मन धान लुवत रहिन। खेत कर गोसैया ओमन कर धीरे धीरे काम कराई देख के फिकराए रहे और ओमन उपरी जंगात रहे। मुर्गा उकर नगी जाए के कहिस,
2: मोहूला बनिहार राग बेका गिरहत,
1: खेत गोसैया इसने खिजियाए रहे कहिस।
0: ताय मुर्गा जात धान लुए पर सकबे,
2: तय लुआए के तो देख गिरहत।
1: और सचो उमन 20 जने बुधिहार मिल के एक छीनाला काटे बर नी सकत रहे, तब ले हर चार छीनाला टुंडराए रखे। खेत गोसैया हर ए देख के मने मन कहिस,
0: बड़ सुघर बनिहार भेटन जी। ने मुर्गा ते ये बता कि तय बनी कितना लेबे।
2: काही नहीं, बस सांजुआर छुट्टी घरी मोर दोनों कान में धान ला भरवाए देबे।
0: ठीके हवे।
1: और बड़ सस्ता बनिहार भेटन कई के ओला काम पर रख लेहिस। सांजूर जब सब बनिहार धान लुई के चल देहिन तब मुर्गा घलो अपन भूति मांगिस और मुँह ला घुमाए के कहिस,
2: ले मोर कान में धान ला भरवाए दे।
1: खेत गोसैया अंजुरी ले धान भरे लागिस तो मुर्गा हर कहिस,
2: का अंजुरी ले धीरे धीरे भरत हवा, सुपा ले भर नहीं।
1: और वे कह के अपन कान में सुपेच सुपा धान भरवाए लागिस।
2: ले अब एगो पैरा कर ठेठी बनाए के लगाए दे।
0: एगो कान हर भर गिस त दूसर कान ला भरवाए लागिस और पैरा कर ठेठी लगवाए के ओहर घरे पहुंचिस तो कहिस,
2: ए दाई दूरा ला उघार।
0: बुढ़िया केवाड़ी खोलिस तब मुर्गा हर फेर कहिस,
2: मैं कहे रहे हैं

0: ता तय घर मन ला बाहर लीप के राखे हवस कि नहीं?
1: बुढ़िया मने मन कहिस,
2: इहर धान के कहाँ जग राखिस हवे, नी दिसता है।
0: मोर कान कर ठेठी ला हिकाल तो दई।
1: ए कह के अपन मुड़ी ला घुमाए दहिस। बुढ़िया हर ओकर कान कर ठेठी ला हिकालिस ता ओकर घर दूरा अंगना कोठी भाड़ी सब धान ले भर गिस।
0: ले दई, अब एहू कान के ठेठी ला हिकाल दे।
1: अब तो बुढ़िया कर घर में धान रखे बर जगह नहीं रहे। धान मल्ला सहित लहिस ता मुर्गा हर कही,

0: दाल नून तेल ले आओ तो तोर बर सुघर बियारी रांधू।
1: आज बर रहे दे दई, काल ले दाल तेल नून घलो भूती कर के लानू।
0: एक दिन बुढ़िया हर बैठे बैठे अपन लुगा मन में चेथरा साटत रहीस। ये देख के मुर्गा हर सोचिस,
1: मोर दाई कितना स्वाभिमानी हवे, चाहतीस तो मोला कही के एक ले बैठ के एक लुगा कपड़ा मंगवा सकत रहीस।
0: ओहर नगी जाए के कहिस,
1: का करत हस दाई?
2: बुढ़िया हर ल जाए के कहिस।
0: काही नहीं बेटा, एदे अपन लुगा छिद्रा मन ला चटिक सहारत रहें।
1: मैं सब जानत हूँ दाई, रुक जा, काल ले तोर बर नवा लुगा घलो ले आनू।
2: आने दिन मुर्गा हर ओकर घरे नावा नावा लुग्गा कपड़ा मन के खरही गाय तेहिस। एक दिन कर दिन में बुढ़िया हर कहिस,
0: ए बेटा, हमर घरे नून तेल कपड़ा लत्ता जम्मो जात हो गईस, बस एक के जात के कमी हवे।
1: का जात कर कमी दाई?
0: ए घर ला संभारे जोगाए वाला के बेटा, ते मोर बर एगो सुघर कस बहुरिया घलो लाइन देते तो का नहीं।
1: बस एतरेज गोइठ हवे दाई, तैं फिकिर झिन कर दाई, मैं तोर बर अजे बहुरिया खोजे बर जात हूँ।
2: और ये कह के मुर्गा हर अपन दाई बर बहुरिया लाने चल दिस। चलते चलत एगो राजा कर राज में पहुंचिस। वो राज के राजा कर बेटी जब बर सुघर और भक्तिन रहिस। वो हर रोज तलवा में नहाए के भगवान महादेव ला जल चढ़ाए। एक दिन वो हर अपन सखी मन संग तलवा में नहात रहिस। मुर्गा हर ओला देखिस तब मने मन कहिस,
1: एहर मोर दाई बर बहुरिया ठीक रही।
2: औ कलेस तलवा में ढुईक के राजा कर बेटी कर गोड़ ला धैर लिहिस औ कहिस,
1: मैं तोर संग बिहा करे चाहत हूँ, जब ले तैं हव नी कहबे तोर गोड़ ला नहीं छोड़ो।
0: कोजिन का जात हवे सोच के राजकुमारी के जम्मो सखी मन भाग पराइन। अब राजा जग जाए के जम्मो गोठला कह सुनाई। राजा हर अपन 8-10 गो सिपाही मन ला ले के तलवा धरी पहुंचिस और कहिस,
2: तय मानुख देवता भूत परे जो हवस तेला कर, और का लेबे तेहुला हम बता।
1: मैं कौन हाँ तेला छोड़, मैं तोर बेटी संग बिहा करे बर चाहत हूँ। जब ले तय मोर संग एकर बिहा करके बचन नी देबे तब लेला नी छोड़ो।
0: राजा बिचरंगा कहा करतीस, बेटी के जान बचाए बर बचन दे दहीस। तेकर बाद मुर्गा राजा के बेटी ला धैर के बहरे हिंकलिस। राजा सोचिस,
2: मोर बेटी के दुल्हा एकुट मुर्गा बनी।
0: अपन देहल बचन ला सोच के राजा ला गस्ती मारे लागिस। ता राजकुमारी हर कहिस, जाय दे दाऊ, भगवान हर मोर कर्म में यही ला लीक देहिस हवे, तेला का करबे, मोर बिहा एकर संग कैरते।
2: बड़े धूमधाम ले राजा हर ओमन कर बिहाव ला कैर देहिस। मुर्गा अपन दुल्ही ला लेके गाजा बाजा संग घरे चल परिस। डोली जब गांवे पहुंचिस तो चारों कति हाहाकार मच गिस। बुढ़िया के मुर्गा बेटा राजा कर बेटी ला बिहाय के लानत हवे। ये गोठ जब बुढ़िया हर सुनीस तो अपन बेटा बहुरिया ला परिचे बर समान सजोरे लागिस।
0: एतिक सुघर बहुरिया ढुकाए के बुढ़िया जबर फुला होत रहे। बुढ़िया के बेटा बहुरिया एगो कोठरी में रहे लागिन। राजा के बेटी घलो मन लगा के घर परिवार के सेवा करे लागिस।
1: अब का होए कि रोज राती जब राजा के बेटी सुईत भुलाए तेघिन ओ मुर्गा अपन खोचली ले बहरी हिकेल के सुघर नौजवान बन जाए और रात भर अपन दुल्हिन जग बैठ के भिनसरे फिर अपन खोचली में ढुईक के वही कस मुर्गा बन जाए।
2: एक दिन कर बात है, राजकुमारी ला जब बर रात ले नींद नी परत रहे। राजा के बेटी यही कस आखिला मुइंद के मने मन कुछ सोचत रहे। एक धार अनचखा आँख खोल के देखीस ताचरज में पड़ गिस।
0: ये मुर्दाई मोर दूल्हा मुर्गा के भेस में एतेक सुखर नौजवान हवे,
2: और झट ले आँखी मूंद लेहिस और सुते कर बहाना कर के ओकर जम्मो हरकत ला देखे लागिस। भिनसहरा होते ओ नौजवान फिर ले

0: अपन खोचली में ढुक के मुर्गा हो किस
1: बने तो ये बात हवे।
0: ऐसने सोच के राजा कर बेटी बिहंचे सब गोटला बुढ़िया ठन कही सुनाइस। बुढ़िया हर एगोट उपाय सोचिस और राजा कर बेटी ला कहिस,
1: यदि अब की रात ओहर हिकल ही ना तो ताय मोला कैसनो कैर के इशारा कर देबे।
0: रात के बुढ़िया अपन गोरसी में आगी धधकाए राखे रहिस। मझिन राती जब वो नौजवान अपन खोचली ले हिकलिस त राजा कर बेटी हर चूरी बजाए के बुढ़िया ला इशारा कर देहिस। बुढ़िया हर उठिस और ओकर खोचली ला उठाए के आगी है ढोए देहिस।
1: भिनसारे ओ नौजवान फिर ले ढूंगे भर हकबकाए के अपन खोचली ला खोजे लागिस। तेही घनी बुढ़िया और राजा के बेटी आए के टप ले ओकर गोड़ ला धर ले।
2: मोला मोला छोड़ देवा मोला मोला जाए भर हवे।
1: आप तोला नी जान देन।
0: ऐसन कह के दोनों और जोर ले ओकर गोड़ ला धर लेहिन।
1: ओमन के जीत के आगू नौजवान हार मान गईस और कहिस,
2: मैं एगो शराब कर चलते मुर्गा बन गए रहे, बाकी तोमन के भक्ति और महादेव के कृपा ले मैं फेर ले मइनसे बन गए।
0: ओ दिन ले ओमन कर भाग फिर गईस। जम्मो झन सुख ले रहे लाकिन बुढ़िया के भाग जागीस, मुर्गा गईस मइनसे बने। कायल ले फिर आने सुनिया, आज कर कहनी बस इतने।
1: बुढ़िया कर मुर्गा लोक कथा श्रृंखला के सकहनी में अभी आपने सुनी ये कहानी। संकलन व लेखन रामचंद्र प्रसाद सोनी का था। वाचन स्वर थे शोभनाथ साहू, कमलेश सिंह और मृदुल गुप्त के। संयोजक थे नागेंद्र दुबे और प्रस्तुति थी शोभनाथ साहू की। लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी की अगली कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे एक और सरगुजिया कहानी। आज यहीं तक, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किस्सा कहानी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए फिर से कार्यक्रम सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ असमिया भाषा में। गीतकार हैं सतीश दास।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे।
0: ए माती रे मोरो मोते,
1: मोरो मोते।
0: माती के,
1: माती के।
0: सुमिलो,
1: सुमिलो।
0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
1: ए माती ते।
0: ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी।
0: जी कैसे? ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दो बार आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार,
1: दूर
0: आका हार। रोहन,
1: रोहन।
0: कियोनु,
1: कियोनु।
0: लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर। ख नहीं बोलना, ह। खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर। मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा,
1: आहा आहा।
0: फिर मातीर बुकुत,
1: मातीर बुकुत।
0: हाँ, मातीर बुकुत। मोनोर,

0: मालोती,
1: मालोती,
0: बूटोलो,
1: बूटोलो,
0: मोनोर, मालोती, बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे,
0: हुरोर हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे,
0: पापोरी रे आजी
1: आजी।
0: इतना हो गया ना?
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार थापो,
1: थापो
0: नाहुजुवा,
1: नाहुजुवा,
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना?
1: जी
0: हाँ। हुंदोर,
1: हुंदोर,
0: हुदिनोर,
1: खुदिनोर
0: नहीं खनी ख, खुदिनोर,
1: खुदिनोर,
0: नौतून,
1: नौतून,
0: दृष्टि,
1: दृष्टि,
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि,
1: दृष्टि,
0: दृष्टि,
1: दृष्टि,
0: शनि सही बोलना, दृष्टि,
1: दृष्टि,
0: कौनो ना हुआ,
1: ना हुआ।
0: आगे ना?
1: जी हाँ।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गीत प्रशिक्षण पाठ। असमीय भाषा में गीतकार से सतीश दास। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए फिर से बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुंजन और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी विक्की उपता। दोस्तों, आज का हमारा विषय है समय बदल गया है या हम। साथियों, अक्सर गांव की चौपालों में, खेतों की मेड़ों पर, चाय की दुकानों में और घर के आंगन में एक बात जरूर सुनने को मिलती है, अब वो समय नहीं रहा। लेकिन क्या सच में समय बदल गया है या फिर हम बदल गए हैं? पहले रिश्तों में अपनापन था, बातचीत में मिठास थी, लोग कम साधनों में भी खुश रहा करते थे। आज साधन बढ़ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, दुनिया हाथ में आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून कम हो गया है। इन्हीं बातों को समझने और महसूस करने और दिल से जोड़ने के लिए आज हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी बातें और इसके साथ ही हम सुनेंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत। तो साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन का पहला गीत फिल्म कर्म से। आवाज़ है आशा भोसले और किशोर कुमार की, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का, शब्द रचना है राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी की।

साथियों, आज हम बातें कर रहे हैं समय बदल गया है या हम विषय पर। तो साथियों, जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, कभी खुशी कभी परेशानी, कभी सफलता तो कभी संघर्ष। लेकिन पहले के लोग इन उतार चढ़ाव को बहुत सहजता से स्वीकार कर लेते थे। आज हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, शायद इसलिए हमें लगता है कि समय खराब हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि समय हमेशा आगे बढ़ता है। बदलाव जीवन का नियम है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग

परिस्थितियों से लड़ते थे, आज लोग परिस्थितियों से डरते हैं। पहले लोग एक दूसरे का सहारा बनते थे, आज लोग अकेलेपन में घिरते जा रहे हैं। इन्हीं भावनाओं से बहुत खूबसूरती से बयां करता हुआ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत, जिसे फिल्म बजरंगी भाईजान से लिया गया है। आवाज़ है जुबिन नौटियाल की, संगीतकार हैं प्रीतम, गीतकार हैं नीलेश मिश्रा।

साथियों, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में। आज हम बातें कर रहे हैं समय बदल गया है या हम। साथियों, पहले गांव में शाम होते ही

लोग घरों के बाहर बैठकर बातें करते थे, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग अनुभव सुनाते थे और रिश्तों में गर्माहट महसूस होती थी। आज मोबाइल की स्क्रीन ने लोगों को एक कमरे में रहते हुए भी दूर कर दिया है। आज हम दुनिया से जुड़े हुए हैं लेकिन अपने लोगों से कहीं ना कहीं कटते जा रहे हैं। पहले दुख बांटने वालों लोग मिल जाते थे, अब लोग अपनी परेशानियां छुपाकर मुस्कुराना सीख गए हैं। समय ने सुविधाएं दी हैं लेकिन सुकून छीन लिया है। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं पहले का समय अच्छा था। इन्हीं उलझनों और जिंदगी की सच्चाई को बहुत गहराई से महसूस करते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म नसीब से। आवाज़ है अनवर हुसैन, कमलेश अवस्थी, सुमन कल्याणपुरी के, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार हैं आनंद बख्शी।

एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में। आज हम बातें कर रहे हैं समय बदल गया है या हम। तो दोस्तों, पहले लोग दूसरों की खुशी में खुश हो जाते थे। गांव में अगर किसी के घर शादी होती थी तो पूरा गांव परिवार बन जाता था। किसी के घर दुख आता था तो पूरा मोहल्ला साथ खड़ा दिखाई देता था। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान खुद तक सीमित होता जा रहा है। लोग अपने काम और अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि रिश्तों के लिए समय ही नहीं बचता। क्या सच में समय बदल गया है या फिर हमने इंसानियत और अपनापन पीछे छोड़ दिया है। आज भी अगर हम किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, तो दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी, क्योंकि इंसानियत कभी पुरानी नहीं होती। तो इन्हीं भावनाओं को समर्पित करते हुए साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत अनुराधा पौड़वाल के स्वर में। संगीतकार हैं आनंद श्रीवास्तव, मिलिंद श्रीव, गीतकार हैं समीर और फिल्म का नाम है बेटा।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
1: अरे?
0: डिजिटल

0: अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
5: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
4: अच्छा, वो कैसे?
5: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
4: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
5: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का एसटीडी कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
4: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
5: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: साथियों, आज हम बातें कर रहे हैं समय बदल गया है या हम विषय पर, और इसे लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त विकी गुप्ता। साथियों, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। बचपन कब बीत जाता है, जवानी कब जिम्मेदारियों में बदल जाती है, और जिंदगी कब यादों में सिमटने लगती है, पता ही नहीं चलता। पहले लोग कम साधनों में खुश रहते थे क्योंकि उनके पास समय था अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए। आज सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन समय कम पड़ गया है। आज लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं कि रिश्तों की कीमत भूलते जा रहे हैं। कई बार माता पिता अपने बच्चों से बात करने को तरस जाते हैं। गांव की वो पुरानी चहल पहल अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन यादें कभी पुरानी नहीं होती। पुराने दिन हमेशा दिल के करीब होते हैं। तो साथियों, इसी एहसास के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में। संगीत निर्देशन है अनु मलिक का, गीतकार हैं जावेद अख्तर, और फिल्म का नाम है रिफ्यूजी।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, आज तनाव हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। छोटी उम्र में ही लोग चिंता और दबाव में जीने लगे हैं। पहले जीवन कठिन जरूर था, लेकिन लोग मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि पहले लोग हर परिस्थिति को स्वीकार करना जानते थे। वे मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे और जीवन को सरलता से जीते थे। आज तुलना ने इंसान को बेचैन कर दिया है। हर कोई दूसरों से आगे निकलना चाहता है, लेकिन जिंदगी दौड़ नहीं है। जिंदगी को मुस्कुरा कर जीना भी जरूरी है। हर समस्या का समाधान समय के साथ निकल ही आता है। अगर हम अपने गाँव की पुरानी तस्वीर याद करें तो वहाँ रिश्तों की मिठास दिखाई देती है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, त्योहारों का आनंद मिलजुल कर मनाया करते जाता था। आज आधुनिकता आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच दूरियां भी बढ़ी हैं। अब लोग साथ रहते हुए भी दिल से दूर हो गए हैं। रिश्तों में औपचारिकताएं बढ़ गई हैं, लेकिन जिंदगी का असली आनंद रिश्तों में ही छिपा है। प्यार, अपना मन और सम्मान, यही इंसान को खुश रखते हैं। जीवन की इसी सच्चाई को बड़े ही सुंदर शब्दों में बयां करते हुए आइए सुनते हैं फिल्म भाग मिल्खा भाग से ये प्यारा सा गीत। आवाज है सिद्धार्थ महादेवन के, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लोय का, शब्द रचना है प्रसून जोशी की।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी, मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इनका प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती, रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा, और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें, गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
5: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
4: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
5: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
4: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774-230600। नंबर एक बार फिर 07774-230600।
6: दोस्तों, समय कभी रुकता नहीं, हर पल गुजर जाता है, याद बन जाता है। इसलिए जो समय हमारे पास है उसे प्यार और खुशियों के साथ जीना चाहिए। आज लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहे हैं। पहले लोग छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढ लेते थे, खेतों में काम करते हुए भी गीत गूंजते थे, त्यौहार में पूरे गांव का उत्साह देखने लायक होता था। अब जीवन तेज हो गया है लेकिन दिल कहीं थक गया है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में थोड़ी सरलता वापस लाएं। पहले दोस्ती सिर्फ साथ घूमने तक सीमित नहीं होती थी, दोस्त मुश्किल समय में परिवार से भी ज़्यादा बढ़कर साथ खड़े होते थे। गांव में दोस्ती भरोसे और दिल से निभाई जाती थी। आज सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त मिल जाते हैं लेकिन मुश्किल समय में साथ देने वाले लोग कम ही होते हैं। दिखावा बढ़ा है और सच्चाई कहीं पीछे छोड़ती जा रही है। हमें फिर से उन रिश्तों को मजबूत करने की ज़रूरत है जो विश्वास और अपनापन सिखाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सच्चे रिश्ते ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाज़ है उदित नारायण और साधना सरगम के, संगीत निर्देशन है जतिन ललित का, गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी।

साथियों, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। कौन सा पल आखिरी हो कोई नहीं जानता, इसलिए ज़रूरी है कि हम शिकायतों से ज़्यादा खुशियाँ बांटें। समय को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। अगर हम अपने व्यवहार, सोच और रिश्तों को बेहतर बना लें तो दुनिया फिर से खूबसूरत लगने लगेगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम तकनीक के साथ साथ इंसानियत को भी महत्व दें, अपने परिवार को समय दें, दोस्तों से दिल से जुड़ें और गाँव की उस पुरानी आत्मीयता को फिर से जीवित करें, क्योंकि शायद समय उतना नहीं बदला जितना हम बदल गए हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ सुनिए यह भावुक और खूबसूरत गीत, जिसे फिल्म कल हो ना हो से लिया गया है। आवाज़ है सोनू निगम की, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लोय का और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

तो साथियों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुंजन यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त विकी को दीजिए इजाजत। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए जानते हैं तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 41.60 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान संबंधी सूचना के बाद आइए एक नज़र डालें आज के शेष आकर्षणों पर। अब से कुछ देर में आप सुन सकेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने और श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपकी पसंद का आनंद आप ले सकेंगे दिन के 11:05 पर। साथ ही दोपहर के ठीक 12 बजे आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग और 12:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आप मन के गीत, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम चीले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे शाम 6:05 पर और कार्यक्रम कानून की बात आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथ ही शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा 2:10 पर और युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। साथ ही ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाला सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। श्रोताओं की ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का आनंद आप ले सकेंगे 2:40 पर और 9:30 पर। साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे 2:30 पर और सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा सुन सकेंगे शाम 7:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे और गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:05 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधली आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर और सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:03 हुए हैं। लीजिए फिर से नई फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं जुबिन नौटियाल के स्वर में इस प्यारे से गीत से। संगीत निर्देशन है अमाल मलिक का, शब्द रचना है कुमार की और फिल्म का नाम है कोई जाने ना।

लीजिए फिर से कार्यक्रम नए तराने की अगली पेशकश फिल्म काबिल से। आवाज़ है जुबिन नौटियाल की, संगीतकार हैं राजेश रोशन और गीतकार हैं मनोज मुंतशिर।

लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला गीत पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह के स्वर में। संगीत निर्देशन है जीत गांगुली का, सब दृश्य है इरशाद कामिल की और फिल्म का नाम है आशिकी 2।

0: अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी।

0: राजधानी अंबिकापुर। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर भी।
1: लीजिए फिर से कार्यक्रम नेतराने की अगली पेशकश फिल्म केदारनाथ से। आवाज है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के, संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का, शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही
1: कैसे कहिया बिनु भैया। ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लागे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज हर नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हाँ।
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज़ पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज़ में भी एला दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अबे तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ
1: हुँ?
0: तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

0: लीजिए फिर से कार्यक्रम संजू से। कार्यक्रम का अगला गीत आवाज है सोनू निगम सुनिधि चौहान के, संगीत निर्देशन है रोहन रोहन का, गीतकार हैं पुनीत शर्मा।
1: प्राण प्रिय

0: समझ हैं? हाँ
1: बढ़िया।
2: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
3: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
4: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
3: क्या 230-600?
2: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
3: पक्का?
2: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
5: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
6: लीजिए फिर से कार्यक्रम नेतरानी की अगली पेशकश फिल्म हैटी स्टोरी 2 से, जिसमें मिथुन की सब दृश्यों को संगीतबद्ध किया है मिथुन ने और आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

लिशे हप्पी से फिल्म दिलवाले से ये गीत, आवाज है अरिजीत सिंह और अंतारा मित्रा के, संगीतकार हैं प्रीतम, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

लीजिए अभी इसे कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, संगीत निर्देशन है अमाल मलिक का, सब दृश्य है मनोज मुंतशिर की।

नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने की अगली पेशकश में लीजिए, सुनते हैं हृतिक फर्स्ट केस का ये प्यारा सा गीत। आवाज है अरिजीत सिंह की, संगीतकार हैं मिथुन, गीतकार हैं सईद कादरी।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: लीजिए फिर से कार्यक्रम नए तराने की अंतिम पेशकश फिल्म द किलर से। आवाज है के और श्रेया घोषाल की, संगीत निर्देशन है साजिद वाजिद का, शब्द रचना है जलीस सिरवानी की।

0: इसी गीत के साथ नए तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11 बजे हैं, समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
2: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 5वें चरण में ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने बड़ी बढ़त बना ली है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने अमेरिका पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। उधर महिला वर्ग में अमरीका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन है। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7

0: विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दो मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और इस कार्यक्रम में आज आप सभी के साथ हूँ मैं पूनम उपाध्याय। तो करते हैं शुरुआत कार्यक्रम की, सुनते हैं ये गीत एक रिश्ता फिल्म से अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, संगीत नदीम शवन का है और इस गीत के लिए आप सभी ने हमें पत्र लिखा है। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर, प्रशांत रत्नेश प्रजापति। ग्राम राजापुर लकरापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, संतोषी मरकाम, रूपमती मरकाम ने। करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, दीपक चांदनी, दीपा और कृति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े। और ग्राम राजापुर लकरापारा जिला सूरजपुर से ही नयन प्रकाश मरकाम। सारस्थल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा। बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, बेबी अनिष्का, राधिका गजभिये। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और रबान अब्बासी। बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। दिल्ली शहर मेरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। आप सभी ने सुनना चाहा है इस गीत को, तो सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

आप सुन रहे थे एक रिश्ता फिल्म से गीत अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ों में। अब सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले कुमार सानू की आवाज़ में, कल की आवाज़ फिल्म से, समीर की रचना, संगीत नदीम शवन का और फरमाइश आप सभी की। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल रॉय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, इंद्रमन, सविता, कुंती, चंदन और प्रीति कश्यप, लेवाखेड़ मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाव खड़से, ललिता खड़से, परी खड़से, गणेश कार्तिक भाव खड़से, स्वाति प्रयाग चौधरी, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, जांभरून अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वी जोशी, साध्वी जोशी, परमणि हुन से गणेश हर गावकर। आप सभी ने इस गीत को सुनना चाहा है, सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत आशा भोसले कुमार सानू की आवाज़ों में।

कल की आवाज फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले कुमार सानू की आवाजों में। अब सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां के संगीत निर्देशन में अलका याग्निक कुमार सानू का गाया ये गीत फिल्म कच्चे धागे से। आनंद बख्शी के बोल हैं संगीत और इस गीत को सुनना चाहा है अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी वर्मा, भूपेश वर्मा, दीपेश वर्मा, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता ऋषवंत साहू, हिरेंद्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास संजीव त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा, छुटकी शरद और पूरा माखीजा परिवार। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा। आप सभी ने इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की थी, तो सुनते हैं ये गीत आप सभी के पसंद का।

कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, कुमार सानू की, आनंद बख्शी की रचना, संगीत जतिन ललित का। और सुनना चाहा है इस गीत को महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। नयापारा भिरई से श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, इसराज सूर्यवंशी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्राची सूर्यवंशी, टीयूषी सूर्यवंशी। फुलसर वाहिया कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नयन दास दीवान, शीला दीवान, ओम प्रकाश रुखमणि, जय प्रकाश, प्रीति दीवान और सिद्धांत दीवान, सानवी और पूरा परिवार। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडे शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निमान शर्मा। जरूड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, आदि आर्या, चंद्रप्रभा वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं राम लखन फिल्म से गीत अनुराधा पौडवाल मनहर की आवाजों में, बोल है आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत को आप सभी ने पसंद किया है। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, काजल प्रज्ञा, अनुष्का यादव, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और पूरा श्रीवास्तव परिवार। ग्राम

बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम, डावर तालाब लोनी से राजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, सुजाता पोहरकार, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक, और बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर। आप सभी ने पत्र लिखा है इस गीत को सुनने के लिए, तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

राम लखन फिल्म से गीत अनुराधा पडवाल मनहर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं अलका याग्निक विनोद राठौर के युगल स्वरों में बाजीगर फिल्म से गीत, जमीर काजमी की रचना, संगीत अनु मलिक का। और पसंद किया है इस गीत को साल्हे भाटापारा महासमुंद्र से जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण ध्रुव, खेमू ध्रुव। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन तानिया। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका अनामिका, बलदाव यादव, रानू खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और

0: और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
1: इस संदेश के बाद कार्यक्रम में सुनते हैं साजन की बाहों में, इस फिल्म का गीत साधना सरगम कुमार सानू की आवाजों में। बोल हैं समीर के, संगीत नदीम शवन का है और इस गीत को पसंद किया है भाटापारा से बच कामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर सोना डीह से, सुब्रत चौधरी बेबी अनिशा सिद्ध बाबा भाटापारा से, संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा, शिवम वैष्णव पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से, उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदीहा खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, पोतरा से मुजदबा खान, पोतरी आफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, भोरसुदा से भगवानी, गजेंद्र चिराग, संतोषी चंद्रप्रकाश, नेहा सेन और यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: चार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की, अब एयरपोर्ट पर रेल बनाने पर प्रतिबंध। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रेल बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने तक वाले स्थान पर रुक रुक कर रेल बनाने, फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नई दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 महीने में पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों यानी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाएं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कार्यक्रम का आज ऐलान होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित पठानिया सहित युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और अपेक्ष मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान गर्म हवा चलने और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कल प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन कॉपी प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। रायपुर पुलिस ने पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जांजगीर के करही गांव में करीब 1 महीने पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की, अब एयरपोर्ट पर रेल बनाने पर प्रतिबंध। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का

कार्यक्रम में आपने पहले सुना निदा फाजली की शब्द रचना लता मंगेशकर जगजीत सिंह की आवाजों में। अब सुनते हैं ये भजन अलका याग्निक की आवाज में।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: इस संदेश के बाद कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में उम्मीद फिल्म से गीत। रचना है शकील बदायूनी की और संगीत रवि का है।

मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग अभी आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए राम तेरी गंगा मैली से ये रचना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

इसी कव्वाली के साथ मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे

0: 30 मिनट हुए हैं। आप मन के गीत, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत।

आप मन के गीत सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी मनला राजकुमार के नमस्कार। संगवारी हो कार्यक्रम में पहले आपला सुनावतन झालाराम साहू और साथी मन के गाए ए गीत जेकर बर हमला फरमाइश भेजे हवे हमर ए श्रोता संगवारी मन। चरडोंगरी पिपरियाले दुर्गा राम साहू अजय कुमार साहू किशन जय कुमार कुमारी साहू इंद्राणी माया साहू। नर्मदा धाम सुरसुलीले कैलाश यादव सुरेश यादव डिकेंद्र यादव योगेश यादव। कोरदाले कलीराम यादव छतराम शेषराम यादव। सांकरा भूमिया तिलदाले मनोज निषाद प्रतिभा निषाद पूर्वी खुशांत निषाद। रोहासीले डगेसा राम साहू घनश्याम साहू नूतन गौरव साहू। मोहाली चंडीगढ़ ले टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा। कालका ले शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज साहिल। भाटापारा ले नारायण यदु पुनिया यदु राकेश आरती यदु। भाटापारा ले मिलाउदास कुलदीप संतोष संदीप लक्की यश कुलदीप। अमली पदर देव भोगले निकुंज तिवारी लाची तिवारी ममता तिवारी। गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांती मिश्रा अर्चना मिश्रा धनंजय मिश्रा धवलपुर गलिया बुनली। तो आवो सुनो आप सबके फरमाइश भेजें ए गीतला।

कल्याण सिंह गायकवाड़ और किरण सोनवानी की आवाज़ में सुनथन ए गीत और ए गीत सुने भर फरमाइश भेजे हवाए हमारे श्रोता संगवारी मन। ग्राम चना गाँव ले कोमल शोरी गजानन नेताम जैनूराम शोरी नंदलाल मरकाम भागवत देवांगन पदुम देवांगन सुनैना पिंकी यश शीतल प्रियांश तन्वी नीता चंद्रवती युवराज सिंह रामजी देवांगन कोष्टापारा जुड़वा चौक सरंगपाल ले अरबरी खुर्द बटरेल दुर्ग ले चूरामन लाल वार्डे जैनी वार्डे विवेक कुमार वार्डे नेहा वार्डे भिलाई जामुल ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ वर्मा संजय प्रधान पूजा प्रधान मन रामनगर रायपुर ले राजेश अंबादे शशिकला अंबादे पूजा अंबादे बठेना ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा धनेश्वरी वर्मा चटौत सारा गांव ले सुजान वर्मा सोहद्रा वर्मा आयुषी कृत वर्मा मन कोटा रायपुर ले अरुण वर्मा अनिल वर्मा ईश्वर वर्मा दिनेश सेन कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा रुचि खुशी ओजल वर्मा देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री भाटापारा ले राधेश्याम टेलर और जितेंद्र साहू मन।

संगवारी हो आप मन के गीत कार्यक्रम में अब आप मन ला सुनावत हैं गोरेलाल भरवन और रतन सबिहा के गाए ए गीत जो ला सुने पर पाती औ ईमेल पठोय हवे हमार ए श्रोता संगवारी मन। महासमुंद ले भीषम दास मानिकपुरी साधुराम यादव रामकली यादव किरण यादव आशा यादव मंकू यादव संजय यादव डाली यादव। डोंगरगांव राजनांदगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये अनिष्का तन्मय गजभिये झूलेलाल चौक तिलदा ले हरीश कमल सेतपाल भूमिका सुशीला दादी। खैरागढ़ ले रविन्द्र अग्रवाल के एल यादव दरचूरा ले ददुआ साहू भूरी साहू रेखा मोतीलाल साहू पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता। शिक्षक नगर दुर्ग ले राकेश वर्मा सचिन वर्मा वाणी वर्मा। सिरमुंदा ले सूरज कुमार दामले हेमा दामले कांतिबाई दामले राजेंद्र कुमार दामले। रहमानिया चौक भाटापारा ले मोहम्मद सलीम मोहम्मद नईम और मोहम्मद ताहिर। शंकर नगर दुर्ग ले मानिक सिंह बैस कावेरी नितिन बैस लल्ली लेखमणि बैस। बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला शशिकांता प्रजापति। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया ले दरिया नामल अनीता मोटवानी राजेश रेशम अनिल राज मोटवानी। गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू सुलोचना साहू और राकेश साहू मन।

साधराम रवि और शैल बाला ध्रुव के आवाज में आवव सुनाने गीत और ये गीत पर फरमाइश करे हुए हमारे श्रोता संगवारी मन भर्री टोला डोंडी बालोद ले नमित कुमार गौतम पीहू प्रियंका नीतू मुरली गौतम बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे अंजनी अंगारे लीना त्र्यंबिका अंशुमाला आशुतोष अंगारे हथनीपारा भाटापारा ले चौवाराम वर्मा मुकेश वर्मा दुलारी वर्मा दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा रिंगनी रिंगनी ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा बेलरगांव ले मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु अंकित देवांगन शीतलानगर दुर्ग ले शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर शांतिनगर भाटापारा ले रमजान खान सिकंदर अशरफ खान अयाज अल्फेज खान हजीरुन निशा बिलहाले शेख नासिर महजबीन बानो भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर सोनाडी ले सुब्रत चौधरी इंदिरा नगर भंवरपुर ले राधेश्याम देवांगन चंपा देवांगन राजू जगदीश गोविंदा देवांगन विशाल पायल अक्षय कुमार बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन पुष्पांजलि जया जानवी तृप्तेश देवांगन जवाहर नगर दुर्ग ले आर सी कामड़े वैभव विशाल विपुल कामड़े पटपर डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार कविता जयंती ध्रुव तो अब आप सुनन आप सबके फरमाइश करेगे ए गीतला।

कार्यक्रम के आखिरी में अब सुनथन एक गीत जे लगाए हवे प्रहलाद सिंह कश्यप अउ संगवारी मन। ये गीत भर पाती अउ ईमेल पठोए हवे हमारे श्रोता संगवारी मन। चूड़ी लाइन भाटापारा ले अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद साजिद। बाजारपारा बेमेतरा ले भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल। सिरी गातापारा ले धनेश्वरी साहू, ओम प्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका, पूनम साहू मन। सिरी गाता पारले लावण्या साहू, उपासना, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज, प्रभुराम साहू। गंडई टिकरी पारले जगेश्वर देवांगन, कचरी देवांगन, दीपक कुमार, जयश्री देवांगन, ऋषभ, ऋचा देवांगन। महासमुंद ले सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदिनी शर्मा, ओंकार शर्मा। धरसीवाले छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। गांव पनेका लिटीपुर ले सीमाबाई चंद्राकर, निर्मलाबाई, नंदिनी चंद्राकर। बेरला सीमार ले जीवनलाल सिन्हा, निर्मलाबाई, देवेन कुमार, अंबा सिन्हा, सुधा सिन्हा।

0: छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप मन के गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी और सरायपाली केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं।

0: उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम के पुनः प्रसारण में लीजिए सुनिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई विषय पर ये जानकारी।
2: किसान भाई, आज हम बातचीत करेंगे खेती की बात में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई उत्पादन में किस तरह से लाभकारी हो सकती है। कृषि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के अंडे, लार्वा खेत की गहरी जुताई करने से भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े उनके अंडे एवं लार्वा गहरी जुताई के बाद अंदर

0: काफ़ी गहराई में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका जीवन चक्र चलना असंभव हो जाता है। वे वहाँ के प्रतिकूल वातावरण एवं भोजन के अभाव में हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कीड़ों से आगामी फसल सुरक्षा पर कम व्यय होता है। कृषि फसलों में लगने वाले रोगों के रोगकारक प्रतिकूल परिस्थितियों में क्लेमाइडोस्पोर जैसे जटिल शारीरिक संरचना बनाकर सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति होने पर पुनः अपना जीवन चक्र प्रारंभ कर देते हैं। परंतु ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने पर रोग कारकों के कड़ी धूप के संपर्क में आने से उनके स्पोरों की जीवन क्षमता खत्म हो जाती है और वे आगामी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने पर एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय खरपतवारों के कंद एवं राइजोम मृदा के जड़ क्षेत्र से ऊपर आ जाते हैं, जो कड़ी धूप के प्रभाव से अपनी जीवन क्षमता खो बैठते हैं और अगली फसल में खरपतवारों की समस्या से निजात मिल जाता है। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने से मृदा में काफ़ी गहराई तक जल अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। वर्षा होने पर काफ़ी मात्रा में जल को अवशोषित करने से आगामी फसल को उचित नमी मिलती है। ऐसा देखा गया है कि खेतों में लगातार एक ही गहराई पर हल बखर खेत में जल के अंतः श्रवण में अवरोध पैदा करते हैं, परंतु गर्मी में गहरी जुताई करने पर यह कड़ी परत टूट जाती है, जिससे वर्षा का अतिरिक्त जल भूमि की अंतः संस्तरों में गमन करता है। परिणामस्वरूप भूमिगत जल के स्तर में सुधार होता है। इसके साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु का संचार बढ़ने के साथ साथ सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष खेत में पड़े रह जाते हैं। जैसे ही हम मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में दब जाते हैं तथा विघटित होकर काले भूरे रंग का ह्यूमस बनाते हैं, जो मृदा की भौतिक संरचना में सुधार करता है और मृदा में सूक्ष्म जीवों एवं पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने पर मृदा की जल शोषित करने की क्षमता में वृद्धि होने से खेत में वर्षा के समय जल के प्रवाह की गति में कमी आती है। वर्षा होने पर जल सीधा भूमि की निचली संस्तरों में गति कर जाता है, जिससे जल के कारण होने वाले भूमि कटाव में कमी आती है तथा मृदा क्षरण पर नियंत्रण होता है एवं खेत के पोषक तत्वों का बहाव भी रुक जाने से उसकी हानि नहीं होती। गहरी जुताई हेतु उपयोगी यंत्रों की बात करें तो इस कार्य को कृषक भाई बैल चलित अथवा ट्रैक्टर चलित मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ एवं डिस्क प्लाऊ का उपयोग कर सकते हैं। कृषक को जुताई कार्य फसल कटाई के तुरंत बाद कर लेना चाहिए, जिससे जुताई कार्य की अपेक्षित गहराई प्राप्त हो सके एवं मिट्टी की धूप लगने के लिए लंबी अवधि मिल जाए। वर्तमान में रिवर्सिबल प्लाऊ का उपयोग प्रचलित है। इस प्लाऊ के द्वारा कार्य करने से खेत के बीच में नाली नहीं बनती है। किसान भाई स्वयं के यंत्र गहरी जुताई हेतु क्रय कर सकते हैं, जिस पर शासन द्वारा विभिन्न अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं। बैल चलित यंत्र पर कीमत का 25% अधिकतम 2,500 रुपये तथा कीमत का 25% अधिकतम 10,000 रुपये टॉपअप अनुदान प्रदान किया जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करते समय किसान भाई ध्यान रखें, खेत के ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करें, जिससे मृदा एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। खेतों में जहां पानी भरता हो वहां पर मिट्टी भराई का कार्य भी साथ साथ करते रहना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी उठी पथरीली है वहां पर खेती की जुताई अधिक गहराई से नहीं करना चाहिए, अन्यथा उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत के भूमि की निचली तहों में जाने से खेत की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हर 2-3 वर्षों के अंतराल से करते रहना चाहिए। इस कार्य को संपूर्ण भूमि को 2 हिस्सों में बांटकर प्रतिवर्ष क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। गहरी जुताई के समय खेत के चारों ओर मेड़ बनाना भी लाभप्रद होता है, क्योंकि इसमें वर्षा का जल खेत में ही एकत्रित होने से मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है तथा मिट्टी के पोषक तत्वों को अनावश्यक रूप से होने वाला बहाव भी रुक जाता है। ध्यान रखें किसान भाई, फसल काटने के बाद ही मिट्टी पलटने वाले हल से खेत गहरी जुताई कर लें। खेत की जुताई इस तरह करें कि खेत की मिट्टी भुरभुरी न होकर बड़े बड़े ढेलों के रूप में रहे, ताकि गर्म हवा जमीन में अधिक गहराई तक जा सके। ढेलेदार खेत होने से वह वर्षा का पानी भी सही तरीके से जमीन में अवशोषित कर सकेगी।
1: खेती की बात कार्यक्रम के पुनः प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई विषय पर ये जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 1:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

अपनेपन की खुशबू की बहार आई है। आप सभी के स्वागत में घर आंगन की बगिया सजाई है। स्वागत है श्रोता बहनों आप सभी का आज के घर आंगन कार्यक्रम में। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.2 पर आकाशवाणी अंबिकापुर के केंद्र से आज घर आंगन कार्यक्रम का सफर होगा मेरे साथ यानी कि आपकी सखी शुभिता के साथ। बहनों आप सभी स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। सखियों दोपहर का समय है और तो और आज रविवार भी है, आप तो बहुत व्यस्त होंगी और गर्मी भी बहुत बढ़ गई है। आने वाले दिनों में नौतपा की शुरुआत भी होने वाली है, तो बहनों हमें अपने परिवार के सदस्यों और खुद के काफ़ी ख्याल रखना होगा। भाई गर्मी के मौसम में तो विशेष तौर पर हमें आहार पर ही ध्यान देना पड़ता है कि क्या किसको देना है, किस तरह से देना है, क्या खाना अच्छा होगा, क्या खाना अच्छा नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान तो आप रखती ही होंगी इस मौसम में, है ना बहनों। सखियों हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक हमारे खान पान पर निर्भर करता है। यदि हम मौसम के अनुसार भोजन करें तो शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। गर्मी के मौसम में हल्का और ठंडक देने वाला भोजन हमारे लिए बेहतर होता है। बहनों गर्मी के मौसम में हमें अक्सर ये लगता है जब कोई मेहमान आ जाते हैं कि हम क्या जल्दी से जल्दी बनाएं, लेकिन वो भी पोषक तत्व उसमें शामिल हों और वो हल्का भी रहे। जी हाँ, जैसे दही, छाछ, खीरा, तरबूज, नारियल का पानी आप प्रयोग भी कर सकती हैं, अपने घर के सदस्यों को भी दे सकती हैं, उनकी सेहत में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। हल्का भोजन बनाएं जिससे ज़्यादा तेल मसाला ना हो, क्योंकि आप भी जानती होंगी कि तला भुना मसालेदार भोजन शरीर में गर्मी को बढ़ाता है और पेट से जुड़ी समस्याएँ भी इसमें पैदा हो सकती हैं, और ख़ासकर आज के समय में कई लोग इस समस्या से परेशान हैं और ज़िम्मेदारी तो आप ही की बन जाती है, और आप इस बात का ख्याल भी रखती हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और इस बात का भी ध्यान देना होता है बहनों कि बाहर का खुला और बासी खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ताज़ा और स्वच्छ भोजन ही हमें करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। बहनों केवल आहार यदि सही है तो बहुत बेहतर है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सही समय पर भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। आप अक्सर बनाती होंगी सुबह के नाश्ते में पोहा, इडली या उपमा, साथ ही साथ दलिया, और आप अभी तो अंकुरित चने जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, और भी इसमें पौष्टिक मूंगफली हो गई, इन सबको अंकुरित करके उसका सलाद बनाकर या बच्चों के लिए भेल बनाकर उसे ज़रूर देती होंगी, है ना। और एक बात का तो विशेष ख्याल बहनों हमें रखना होता है कि पानी पीते रहना चाहिए। कई बार बहनों ऐसा होता है कि हम घर के काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि आपको प्यास लगती है लेकिन आप पानी पीना ही भूल जाती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गर्मी में शरीर को लगातार पानी की ज़रूरत होती है, तो समय निकालकर पानी ज़रूर पिएं। यदि आपको थोड़ी सी भी ज़्यादा गर्मी लग रही है या आप रसोई घर में ज़्यादा व्यस्त हैं और पसीना बहुत निकल चुका है तो आप ORS का घोल भी ले सकती हैं ताकि कमज़ोरी ना आए इस मौसम में और आप निरंतर व्यस्त भी रहें और मस्त भी रहें। बहनों यदि हम मौसम के अनुसार अपने खान पान में बदलाव लाएं तो हम लू, डिहाइड्रेशन और अन्य मौसमी बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये तो आप जानती ही हैं, और अच्छा स्वास्थ्य ही सही आहार से मिलता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चूक नहीं करती कि आहार तो आप स्वस्थ ही बनाएंगे और अपने घर के सदस्यों को भी स्वस्थ रखेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगी। बहनों स्वस्थ रहना आसान है जब मौसम के अनुसार हो खान पान। तो आइए अब घर आंगन कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत, क्योंकि कई बहनें हमारे इस मौसम में भी घूमने गई होंगी और अपने आहार का भी ध्यान रख रही होंगी, लेकिन मौसम तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा क्योंकि वो कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने गई होंगी या कहीं और घूमने गई होंगी। तो आइए आपको अब हम सुनवाते

है फिल्म हम आपके हैं कौन से, ये गीत जिसे स्वर से सजाया है लता मंगेशकर और एसपी बाले सुब्रमण्यम ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने और शब्द रचित किया है रविंद्र रावल ने।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप

0: डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस संदेश से पहले बहनों, आपने सुना फिल्म हम आपके हैं कौन का गीत। आप सुन रही हैं घर आंगन कार्यक्रम। जी हाँ, और आज घर आंगन कार्यक्रम में आपसे होगी बहुत सारी बातें, क्योंकि आपके संदेश आ चुके हैं हम तक, और आपकी पसंद भी। जी हाँ, फ़ोन के माध्यम से नहीं, आज हम मेल के माध्यम से आपकी पसंद को पूरा करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं घर आंगन मेल की ओर। बहुत बहुत स्वागत है श्रोता बहनों और साथियों आप सभी का आज के घर आंगन मेल में। और पहला मेल जो हम तक आपका पहुंचा है वो है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, श्रीमती अनिताबाई खडसे और प्रियंका खडसे का। इन्हें हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद है और ये लगातार हमारे कार्यक्रम को सुनती हैं, और इन्होंने अपनी फरमाइश भी लिख भेजी है। अगला मेल है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, करुणा वर्मा, प्रियंका बछोर और दिनेश वर्मा का। साथ ही साथ अगला मेल है अनूपपुर मध्य प्रदेश से, श्रीमती जयमंत्री केवट जी का। और ये लिखती हैं कि इन्हें हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद है और ये फ़ोन के माध्यम से भी हमसे जुड़ी रहती हैं और पत्रों के माध्यम से भी जुड़ी रहती हैं और मेल के माध्यम से भी जुड़ी रहती हैं। लगातार हमारा कार्यक्रम सुनती हैं और सभी कंपेयर साथियों को इन्होंने बधाई दी है। और आइए अब आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत, जिसे स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत को शब्दों में पिरोया है सावन कुमार ने और संगीतबद्ध किया है किशोर शर्मा ने।

घर आंगन मेल में अब अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं बहनों, और अगली फरमाइश है ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से करिश्मा पैकरा, घुरनी पैकरा, मीरा लब्या, दुर्गावती हीरामणि पैकरा और साथ ही जीवधन सिंह पैकरा। नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी देवी गोस्वामी, ट्विंकल गोस्वामी, डिंपल, मीनाक्षी, सुनंदा देवी, निशा और तुलसी गोस्वामी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म हम है राही प्यार के का ये प्यारा सा गीत, जिसे स्वर से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत को शब्द रचित किया है समीर ने और संगीत पद किया है नदीम शमन ने।

सखियों, घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रही हैं घर आंगन मेल, और अगला मेल जो है वो हमें भेजा है दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से भारती वर्मा, शकुन वर्मा, रुक्मणी वर्मा, रजनी वर्मा, प्रतिमा वर्मा, द्रौपदी वर्मा, धनीश्वरी वर्मा और कुमारी पायल वर्मा। ये भी हमारा कार्यक्रम निरंतर सुनते हैं और इन्हें हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आता है और मेल के माध्यम से ये हमसे जुड़ती हैं। अगला मेल है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तामोरिया, प्रभा देवी तामोरिया, अजय देव, तुषार देव तामोरिया, साथी हैं देवशंकर तामोरिया, वन बघेरा राजनांदगांव से आशा सारवा, अंजलि, करीना, करीना सारवा, नीरज, नीलेश और इनके साथी। ग्राम बरगीडी से जैनुल फिरदौसी, मृगेन सिंह, रामेंद्र असलम, आफताब, आफिया, जरीना, जोया, सारा और हिबा। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, रूप साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, अंबिका प्रसाद राजवाड़े, राम खिलावन सिंह पैकरा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर घर आंगन मेल के अंतर्गत सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का ये गीत, जिसे अपनी स्वर से सजाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। इस गीत को शब्दों में पिरोया है आनंद समीर ने और संगीत पद किया है आनंद मिलन ने।

0: बहनों, फिल्म अनाड़ी के इस गीत के साथ अब घर आंगन मेल से विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें ज़रूर लिख कर भेजें और मेल करें। और साथ ही भी हमारा मेल है gharanganair@gmail.com और मंगलवार को घर आंगन मेल का प्रसारण होगा, तो आप हमें जल्द से जल्द मेल कर सकती हैं। बहनों, आज के कार्यक्रम में हमने बात करी कि गर्मी के मौसम में किस तरह से आहार हमें लेना है, और उम्मीद है आप हमें ज़रूर इस बात को बताएंगी भी कि किस तरह से आप इस मौसम में अपने परिवार के सदस्यों का और अपना ख्याल रख रही हैं मेल के माध्यम से। तो मेल करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमें पत्र भी भेज सकती हैं। हमारा पता है घर आंगन, कार्यक्रम घर आंगन द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। और हर शनिवार सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच आप हमें फ़ोन इन कार्यक्रम के तहत फ़ोन करें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 231-917-231-918, और मोबाइल से आपको कोड लगाना होगा 0774। बहनों, आज के घर आंगन कार्यक्रम से अपनी सखी शुभिता को दीजिए विदा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये

अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, ये वक्त है ईमेल की गूंज कार्यक्रम का। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे आज के ईमेल की गूंज कार्यक्रम के इस अंक में। मैं हूं आप सभी के साथ आपके रेडियो साथी पूनम उपाध्याय। शुरू करते हैं कार्यक्रम में। आपके ईमेल

तो साथियों, कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पहला गीत विधाता फिल्म से, सुरेश वाडकर अनवर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की रचना, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिला है आप सभी का, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखन लाल देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, शव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी शिवास, शेख आजाद, पोपोरानी, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का, तन्मय गजभिये, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंदेल कुमार, चंद्रकाला शशिकांता प्रजापति, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेगिया, नमन ढेंगिया, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा और बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा, छुटकी शरद और कुमार डोडवानी। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला नगमा।

विधाता फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर अनवर की आवाजों में। अब सुनते हैं लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाजों में राम तेरी गंगा मैली से ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गीत को पसंद किया है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। धाड़ी नांदोरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल बाठे। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, अनुराग मोहन। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। ग्राम सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। जनकपुरी सहारनपुर से जोन पर्ल और रोजी, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, बाबा कुटीर रायगढ़ से ये श्रोता साथी हैं। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे। अकोला से के शरद पाजपुर, श्रीमती शोभा पाजपुर, बेबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि अक्षय, अभिनव पाजपुर, स्वरूप आनंद सरजाल, सरोज सपना सरजाल, अमान आयुष सरजाल, जोड़ा पीपल अंबिकापुर से ये श्रोता साथी हैं। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। अब सुनते हैं गुलजार की रचना लता मंगेशकर भूपिंदर की आवाज़ों में फिल्म सितारा से। संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत को पसंद किया है मजनू कटिला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, साफिया अरहान खोकर और मोहम्मद हसनैन पवार। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ईमेल की गूंज में अब सुनते हैं ये गीत देवता फिल्म से लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को पसंद किया है वसुंधरा विहार गोधनपुर अंबिकापुर से जयेश प्रसाद शुक्ला, श्रीमती विभा शुक्ला, भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जसवाल, उर्मिला जसवाल, दीपक जसवाल, स्वाति जसवाल, घमहरिया जमशेदपुर से रोहन जसवाल, आर्य जसवाल, दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, राजकोट से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कलावती सोनी, जूली और जगदीश जोहरी, अनिल जैन, मालिन जैन, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक।

मुरली क्षत्रिय, ग्राम पाहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार संध्या और कीर्ति कुमार डिकेश साहू, इन्होंने भी इस गीत को पसंद किया है। तो सुनते हैं आपके पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

देवता फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। अब सुनते हैं एक बार फिर गुलजार की रचना लता मंगेशकर की आवाज़ में खामोशी फिल्म से, और इस गीत को पसंद किया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबेराय, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, दिल्ली से स्वीटी प्रतिभा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल मोहम्मद अफजल नफीसा प्रवीण, महाराष्ट्र से कुमकुम वैष्णवी नम्रता आरती विद्या और सुशीला, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमल कांत मरावी प्रमीला नेहा मरावी पुष्पराज मरावी ऋषभ मरावी, और बेरड़ी से राजेश सोनी कंचन सोनी वैष्णवी सोनी गायत्री सोनी चंचल सोनी। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं त्रिवेणी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, अनजान की रचना संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और सुनना चाहा है वाड़ी खामगांव से अनंता वाढ़े, रामेश्वर वाढ़े, शुभम वाढ़े, कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जेविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अभिका सोनवने, विशाखा सोनवने, संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, पोटिया कला दुर्ग से यशोता साहू है। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेंद्र, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल

0: गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है।

0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

अभी आप सुन रहे थे निदा फाजली की ये गज़ल भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। अब सुनते हैं ये गीत तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल की आवाज़ में।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गज़ल ज़फ़र गोरखपुरी का अशोक खोसला की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम और शेखर की आवाजों में ये भक्ति रचना।

इसी गज़ल के साथ गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, सभा समापन से पूर्व आपको बता दें आज के शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में आप सुनिएगा पंडित हरा शंकर भट्टाचार्य से सितार वादन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:05 पर कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे और शाम 6:30 पर विधिक सहायता पर केंद्रित कार्यक्रम कानून की बात में आप सुनिएगा निशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस कौशल रायगढ़ के अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार यादव से की गई बातचीत। और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण। कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे भजन संध्या कार्यक्रम में 5:05 पर। 5:30 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली में कुछ लोकगीत आप सुनेगा शाम 6:20 पर। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण आप सुनेंगे जिसमें होगा कृषि संबंधित सामयिक खबरें, मंडी भाव, मौसम की जानकारी।

और लोक संगीत। चंद गजलें हम आपकी नजर करेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम में शाम 7:05 पर। श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुनिएगा 8:00 और ईमेल की गूंज हम पेश करेंगे 9:30 पर। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय दिन के 3:02:32 हुए हैं। मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व हम आपको बता दें कि FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली से FM गोल्ड का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। ये वक्त है हमारी सांध्यकालीन सभा के आगाज का। आइए सभा की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, जवाखाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये पोड़िपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ामाचा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, महुआडी, खुटसेरा, पतेबहाल, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 137 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में

0: हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, डंगबोरा, खड़पड़ी, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, झालपानी, कौहा बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराझर, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ है महेंद्र कपूर की, संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का और गीतकार हैं श्रद्धा राम पिल्लौरी।

कार्यक्रम भजन संध्या की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं सचेत एवं परंपरा टंडन की आवाज में ये गीत। शब्द रचना है मनोज मंतसर के। फिल्म का नाम है आदि पुरुष।

आदि पुरुष फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या में। लीजिए आप सुनिए खानदान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी एवं साथियों की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है रवि का और गीतकार हैं राजेंद्र किशन।

कार्यक्रम भजन संध्या की अगली प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए जूली फिल्म का ये गीत, आशा भोसले एवं उषा मंगेशकर की आवाज में। संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

कार्यक्रम भजन संध्या की अंतिम प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए ओ माय गॉड फिल्म का ये गीत। आवाज़ है कैलाश खेर की, संगीत निर्देशन है मीड ब्रोस का और गीतकार हैं कुमार।

कैलाश खेर की आवाज़ में ओ माय गॉड फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम भजन संध्या बस यहीं तक, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की शाम में। तो चलिए करते हैं आज के युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। दोस्तों, एक समय था जब योग को सिर्फ बड़े बुजुर्गों की दिनचर्या माना जाता था। सुबह सुबह पार्क में कुछ लोग योग करते दिखाई देते थे और हमें लगता था ये उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं। पर वक्त बदला, सोच बदली और आज का युवा यानी कि हम समझ चुके हैं कि फिटनेस सिर्फ अच्छा दिखने का जरिया नहीं है बल्कि बेहतर जीवन जीने की कुंजी है। आज की युवा पीढ़ी फिटनेस को लेकर पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक है। कोई जिम जाकर घंटों पसीने बहा रहा है तो कोई सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम से कर रहा है। सोशल मीडिया में भी इसने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वर्कआउट चैलेंजेस और वेलनेस ट्रेंड ने युवाओं को प्रेरित किया कि हम अपने शरीर की ओर और मानसिक स्वास्थ्य की ओर प्राथमिकता दें। पर दोस्तों, आज का युवा सिर्फ बॉडी बनाने तक ही सीमित नहीं है। अब हम समझ रहे हैं कि असली फिटनेस सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी है। और यही वजह है कि आज मेडिटेशन, प्राणायाम और योग की ओर हमारा झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। पढ़ाई का दबाव, करियर की टेंशन और तेज़ रफ्तार

जिंदगी में स्ट्रेस का होना आज आम बात है। ऐसे में योग हमारे लिए सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि स्ट्रेसफुल लाइफ में राहत पाने और खुद को बेहतर समझने का जरिया बन गया है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि कई बार फिटनेस सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट और शो ऑफ तक सीमित रह जाती है। कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए इसे अपनाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली फायदा हमें तभी मिलेगा जब योग और एक्सरसाइज हमारी आदत बन जाए, ना कि बस कुछ दिनों का जोश। तो दोस्तों, ओवरऑल निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जाए तो आज की युवा पीढ़ी यानी कि हमारा दृष्टिकोण योग व्यायाम के क्षेत्र में काफ़ी पॉजिटिव है। आज हमें समझ में आ रहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ज़रूरत है तो बस निरंतरता की, अनुशासन की और सही दिशा में प्रयास की। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि फिटनेस को फैशन नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब स्वस्थ तन होगा तभी मन शांत होगा, तभी जीवन का हर सपना आसान होगा। तो इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज़ में फिल्म मैरीकॉम का ये गीत। गीतकार संदीप सिंह, संगीत दिया है शिवम ने।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, अभी आपने सुना फल मैरी कॉम से ये गीत। चलते हैं हमारे संडे स्पेशल प्रोग्राम युवा पसंद की ओर।

दोस्तों कभी कभी दिल बिना इजाज़त किसी का हो जाता है, फिर लाग छुपाओ यह एहसास आँखों से छलक ही जाता है, फिर एक प्यारा सा कन्फेशन जब दिल कहे अब प्यार हो ही गया है तो क्या करें। तो आइए कन्फेशन थीम के साथ करते हमारे आज के इस क्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसकी फरमाइश की है दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने, रिंगनी से दिनेश वर्मा, कर्णा वर्मा ने।

दोस्तों अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता जी की आवाज़ में फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये गीत। कुछ कन्फेशन बड़े सीधे साधे होते हैं, ना कोई पहेली ना कोई घुमाव, बस दिल की साफ आवाज़।

में फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये गीत। कुछ कन्फेशन बड़े सीधे साधे होते हैं, ना कोई पहेली ना कोई घुमाव, बस दिल की साफ आवाज़। जब मोहब्बत बेझिझक अपना इजहार करे तो एहसास कुछ यूं होता है। तो आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म बरसात का ये गीत, जिसकी फरमाइश की है सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कई बार प्यार में दिल ऐसी गलती कर बैठता है जिसका इकरार करते हुए हल्की सी शर्म और ढेर सारी मुस्कान होती है। एक ऐसा कन्फेशन जिसे सुनकर दिल भी कहे अल्लाह माफ़ करे। तो आइए सुनते हैं सोनू निगम और शिल्पा राव की आवाज़ में फिल्म देसी बॉयज़ का ये गीत, जिसकी फरमाइश की है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कुछ कन्फेशंस शुक्रिया बनकर दिल से निकलते हैं। किसी खास के मिलने के बाद जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। जब दिल अपने हमसफर से कहे, तुम्हारे मिलने से सब मुकम्मल हुआ। तो आइए सुनते हैं विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज़ में फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म से ये गीत, जिसकी फरमाइश की है सत्यम क्लब फूलकोना प्रेम नगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज यादव, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे ने।

0: हो।
1: दोस्तों अभी आपने सुना विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज में ये गीत। दोस्तों आप भी अपने पसंद के गीतों की फरमाइश हमें पत्र और ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है

युवा पसंद युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्टबॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। हमारी ईमेल आईडी है युवा पसंद AIR@gmail.com। इसी के साथ हमारा आज का ये क्रम बस यहीं तक।

वक्त हो चला है दोस्तों आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बता देते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर और प्रश्नों पर आधारित क्रम इंद्रधनुष और फिल्म संगीत। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत आपकी दोस्त शालिनी चौबे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार

भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय ट्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। ट्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश मांडवा का है।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में डायल 112 सेवा के तहत 7 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल और 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन प्रदान किए गए हैं। पिछले दिनों पिंडरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर श्री मरपच्ची ने बताया कि डायल 112 सेवा से जिलेवासियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सकेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने बताया कि डायल 112 सेवा पहले राज्य के 16 जिलों में संचालित थी, अब इस सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी 33 जिलों में कर दिया गया है। श्रोताओं, जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर गौरेला पिंडरा मरवाही जिला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ संतोष कुमार देवांगन ने जनगणना कार्य में लगे 600 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 1 मई से शुरू हुआ है, जो 30 मई तक चलेगा। श्रोताओं, जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कलेक्टर डॉ संतोष कुमार देवांगन ने पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बड़े वाहनों में अधिकतम 100 लीटर, कार में 20 लीटर और दोपहिया वाहन में 2 लीटर तक पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। श्रोताओं, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 22 मई को जिला स्तरीय मूल्यांकन और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के 3 नगरीय निकाय से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति के लिए किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका परिषद गौरेला के 21 और पेंड्रा के 38 तथा नगर पंचायत मरवाही के 68 हितग्राहियों के आवेदन अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए हैं। समिति से मंजूरी मिल जाने के बाद इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रोताओं, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के

0: लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 800 से अधिक किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है। ये किसान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल में बिना पंजीयन के किसानों से धान खरीदी नहीं की जाएगी। श्रोताओं, जिले के आमाडोब और केवची गांव के जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद को अब बेंगलुरु भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत गठित स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संग्रहित इस शहद की ब्रांडिंग और पैकेजिंग का कार्य एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ संतोष देवांगन ने कहा कि स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को राज्य से बाहर नई पहचान दिलाने और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में ये पहल महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। श्रोताओं, गौरेला स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 26 मई को सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर और ट्रेनिंग ऑफिसर सहित 72 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश मांडवा का था। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा के जय जोहार। आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार ह खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातु बांटे संबंधी जारी करिस नवा दिशा निर्देश। नई दिल्ली में होइया नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति बछर 2026 बर काली देही पद्म पुरस्कार। औ कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन दू ठीन आने आने जगह ले बरामद करे है नक्सल डंप। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार ह खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातु बांटे संबंधी नवा दिशा निर्देश जारी करे है। एकर मुताबिक पाछू बछर किसान मन ला बांटे गे खातु के मात्रा के आधार में ए बछर के कोटा तय करे गे है। एकर चलत ए बछर किसान मन ला यूरिया के 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दे जाही। बांचे 20% मात्रा ला उपलब्ध आधार में दे जाही या फिर एकर बदला नैनो यूरिया दे जाही। डीएपी बांटे के काम घलो पाछू बछर के मुकाबला 60% करेगे है। बांचे 4% ला वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी दे जाही। शासन है स्पष्ट करे है कि कोनो भी किसान ला नैनो खातु लेबर मजबूर नहीं करे जाही। यह ऑप्शन रूप में रही। यहाँ बता दन कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हालत और खाड़ी क्षेत्र में चलत तनाव ला देखत राज्य सरकार है किसान मन ला बेरमा खातु दे के निर्णय ले है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काली 25 मई के नई दिल्ली में होइया नागरिक अलंकरण समारोह में बछर 2026 बर पद्म पुरस्कार देही। ए मौका में आकाशवाणी अपन श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 ठिन कार्यक्रम प्रस्तुत करत है। ए एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेता मन के काम और जीवन के बारे में जानकारी दे जाही। एकर प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल में करी जाही। एला न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में घलो सुने जा सकत है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हा नियम कानून में सख्ती राखत नवा गाइडलाइन जारी करे है। जेखर मुताबिक अब हवाई यात्री मन एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में मोबाइल ले रील बनाना पूरी तरह ले बैन रही। संगे जौन जगह में हवाई जहाज खड़े रही और बस ले यात्री मन ला विमान ले जाए जाही वहां तक वाली जगह में रुक के रील फोटो या वीडियो बनाए ऊपर घलो रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार हा जन परामर्श बर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत मसौदा नियम प्रकाशित करे है। ग्रामीण विकास मंत्रालय हा कहे है कि कोनो भी मनखे हितधारक संगठन या संस्था अवैया महीना के 21 तारीख तक ए मसौदा नियम मन ऊपर आपत्ति या सुझाव दे सकत है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ए बछर 1 जुलाई ले सबो राज्य मन मा लागू हो जही। छत्तीसगढ़ सरकार ह कहे हे कि प्रदेश म पेट्रोल और डीजल के कोनो कमी नहीं हे और आम लोगन ला घबरा के उपराहा एला बिसाए के जरूरत नहीं।

0: हैं। सरकार के मुताबिक राज्य में करीबन 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर ले ज्यादा डीजल के भंडार उपलब्ध है। किसान और जरूरी सेवा मल्ला प्राथमिकता देवत ईंधन के रोजिना आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 मई ले ड्रम और जरीकेन में पेट्रोल डीजल दे ऊपर रोक लगाई गई है। सरकार हा लोगन मल्ला अफवाह ले बांचे की अपील करे है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पाली में राखे गई रहीस। ए दरी परीक्षा देवैया मल्ला पहली घाव फेस स्कैन सिस्टम ले गुजरे ला पड़ीस है। चेहरा मैच होए के बादे ओ मल्ला परीक्षा केंद्र भीतरी जाए के परमिशन देगीस। परीक्षा ला लेके कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रहीस। ए परीक्षा पर रायपुर जिला में 22 ठिन केंद्र बनाए गए रहीस। सुप्रीम कोर्ट हा विशेष आवश्यकता वाले लैका मन के पढ़े लिखाई ला लेके छत्तीसगढ़ शासन ला विशेष शिक्षक मन के भर्ती प्रक्रिया ला 2 महीना भीतरी पूरा करे के निर्देश दे है। एक ठिन याचिका के सुनवाई बेरा अदालत हा कहिस कि राज्य में 49,000 ले ज्यादा विशेष आवश्यकता वाले लैका मन पर करीबन 4,000 विशेष शिक्षक के जरूरत है। राज्य सरकार हा अदालत ला बताइस कि 848 स्वीकृत पद में ले 62 जिन शिक्षक मन के नियुक्ति हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट है कहिस कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 जिन विशेष शिक्षक मन ला स्क्रीनिंग कमेटी के आगू में प्रस्तुत होए के मौका दे जाए। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार डहार। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहार ले प्रदेश के सबो डाकघर मन मा काली और परंदिन यानी 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाया जाही। ए दौरान कोनो भी नागरिक अपन तीर तखार के पोस्ट ऑफिस जाके या राज्य सरकार डहार ले नियुक्त अधिकृत एजेंट मन के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना ये सब में निवेश कर सकी। नक्सल उन्मूलन अभियान के चलत कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन 2 ठिन आने जगह ले डंप बरामद करे हैं। DRG, BSF और BDS के संग्रह टीम हां कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा के थाना जगह के गांव पल्लाहूर और जपमरका तीर जंगल भित्री लुका के रखे गए नक्सल डंप बरामद करे है। एमा BGL लॉन्चर, BGL सेल, फायर कार्टिज, AK-47 और SLR के खाली कार्टे समेत बड़कन विस्फोटक जिनिस घलो है। इस तरह सुरक्षा बल मन कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती जगह के गांव मरका बेड़ा आदनार और एलूर के जंगल भित्री ले घलो नक्सल जिनिस बरामद करे है। एमा 3 ठी 12 बोर के राइफल, BGL लॉन्चर, बारूद और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत विस्फोटक जिनिस शामिल है। उथी राजनांदगांव जिला के बॉर्डर ले लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली माओवादी विरोधी अभियान के चलत पुलिस ला भारी सफलता मिली है। पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन बेरा इहोले नक्सली डंप बरामद करे है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया पुलिस धान खरीदी में फर्जीवाड़ा के खुलासा करत साले ओना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दे है। एखर मन ऊपर आरोप है कि बिना धान के वास्तविक आवक के ऑनलाइन एंट्री करके करीबन 99,00,000 रुपया के गबन करेगे है। ए मामला में सहायक खाद्य अधिकारी के रिपोर्ट पर मामला दर्ज करेगी। मौसम के हाल प्रदेश में ए बेरा जोरदार गर्मी पड़त है जेखर ले जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग का चेताया है कि अवैया 24 घंटा के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद समेत प्रदेश के 18 ठिन जिला में ले एक दो जगह में लू चल सकत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम ले अवैया शुष्क और तात्त हवा के सेती तापमान बढ़ गए हवे और एक स्थिति फिलहाल गर्मी ले राहत नहीं मिला थी। वहीं आज रायपुर में 43.6, बिलासपुर में 43.4 और जगदलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज करेगी। यही बीच विशेषज्ञ मन लू ले बांचे बर सावधानी बरते की अपील करे हैं। लोगन मनला भरपूर पानी और तरल पदार्थ पिए के संगे हल्का रंग के सूती कपड़ा पहने और पूरा

0: री लतोप के राखे के सलाह दे हैं, संगे बिना काम के बाहर नहीं जाए के अपील करे हैं। अब थोरकुन समाचार सार मा बलौदाबाजार भाटापारा जिला मा जिला शिक्षा अधिकारी है दू झीन सहायक शिक्षक ला सस्पेंड कर दे है। ये दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरते के आरोप है। रायपुर पुलिस है पंजाब ले नशा के तस्करी करिया एक ठिन गिरोह के पर्दाफाश करत तीन झीन आरोपी ला गिरफ्तार करी है। एक हर मंतिर ले करीबन 56 ग्राम हेरोइन जब्त करे गए है। और बिटकॉइन में निवेश करके मुनाफा देवाए के झांसा दे के एक झीन मनखे ले 7.5 लाख रुपया के धोखाधड़ी के मामला में दुर्ग पुलिस का एक झीन आरोपी ला रायपुर ले गिरफ्तार करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राज्य सरकार ने खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातु बांटे संबंधी जारी करी नवा दिशा निर्देश। नई दिल्ली में हुवैया नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति बछर 2026 बर काली देही पद्म पुरस्कार और कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बलमन दू ठीन आनी आनी जगह ले बरामद करे है नक्सल डंप। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिलावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। आइए सांझ की इस गोधुली बेला का स्वागत करें कुछ लोकगीतों से। सुनते हैं कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भुईहारी गीत से। सरगुजिया लोक गायक सोमेश्वर राजवाड़े और साथियों की आवाज़ है।

छत्तीसगढ़ी लोक गायक प्रभुनाथ वैष्णव एवं साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे किसानी गीत। कार्यक्रम गोधुली बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। कार्यक्रम कानून की बात में लीजिए सुनिए, निशुल्क सहायता योजना लोक अदालत नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ श्री रविंद्र कुमार साव से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है प्रतिमा अजमानी। ये आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रतिमा अजमानी स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम कानून की बात में। श्रोताओं, जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो जीवन भर के लिए होते हैं, जैसे माता पिता और संतान का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। कई बार समय का चक्र कुछ इस तरह घूमता है कि इन रिश्तों के बीच कानून को मदद के लिए आगे आना पड़ता है ताकि हर एक व्यक्ति को जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिल सके। आज कार्यक्रम कानून की बात में जानकारी लेंगे नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान, निशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र कुमार साव जी को, जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैडम,
0: स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद।
0: रविंद्र जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि निशुल्क विधिक सहायता योजना क्या है।
1: जी देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: और हमारे देश में आज भी समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो पूंजीपति वर्ग का है या जिनके पास पर्याप्त पैसे हैं, वो आसानी से अपने लिए बड़े से बड़ा और महंगा से महंगा वकील खड़े कर लेते हैं, जिससे उनको आसानी से न्याय मिल जाता है। पर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, गरीब हैं, शोषण का शिकार हैं, बेसहारा हैं, या कई अन्य ऐसे कारण हैं जिसके वजह से वो कोर्ट नहीं जा पाते, अपने लिए वकील नहीं रख पाते। तो ये विधिक सहायता योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक केवल गरीब होने या किसी अन्य कारणों से अक्षम होने के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।
0: बिल्कुल सर, विधिक सहायता योजना के क्या क्या लाभ आम जनता प्राप्त कर सकती है?
1: देखिए, इसमें मुख्य रूप से इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को निशुल्क

0: कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराना है, पर
1: जी
0: यह योजना यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो भी इसमें शुल्क आता है वो सारे शुल्क विधिक सहायता के द्वारा ही दिया जाता है। साथ
1: जी
0: ही उनके आवेदनों की जो ड्राफ्टिंग होती है वो सारे आवेदन तैयार किए जाते हैं,
1: जी
0: सलाह सहायता दिए जाते हैं। इसके साथ ही और भी अनेक
1: अलग तरीके की मदद भी दी जाती है लोगों को।
0: अन्य तरीके की मदद भी लोगों को दी जाती है।
1: जी
0: अभी वर्तमान में विधिक सहायता शिविर के माध्यम से भी आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, और लोक अदालत के माध्यम से भी आपसी समझौते से लोगों के विवादों का निराकरण किया जा रहा है। ये भी विधिक सहायता योजना का ही एक अंग है।
1: जी रविंद्र जी, कौन कौन विधिक सहायता योजना प्राप्त कर सकते हैं?
0: विधिक सहायता योजना के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है
1: जी
0: कि जैसे महिलाएं हैं एवं बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कोई भी सदस्य प्राप्त कर सकते हैं, औद्योगिक श्रमिक या कर्मकार इसके अंतर्गत आते हैं,
1: जी
0: यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी तरफ से कोई अधिवक्ता पैरवी के लिए उपलब्ध नहीं है तो वह भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। कोई
1: जी
0: दिव्यांग व्यक्ति है या आपदा पीड़ित व्यक्ति है, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप या दंगों का शिकार कोई व्यक्ति है, या गरीब वर्ग के लोग हैं जिनका आय एक निर्धारित सीमा जो कि निर्धारित किया गया है विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम में, यदि उस आय से वो कम आय रखते हैं तो उन्हें भी विधिक सहायता दिया जा सकता है।
1: जी रविंद्र जी, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
0: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो अपने स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर एक साधारण सा आवेदन दे सकता है।
1: जी
0: यदि उसे आवेदन भरना नहीं आता है तो कार्यालय में जो भी कर्मचारी हैं या पैरालीगल वॉलंटियर हैं वो पूरी तरह से सहायता करते
1: जी
0: हैं।
1: ये बहुत सही है, क्योंकि
0: जी
1: जो कानून के शब्दों में जिस तरीके का आवेदन किया जाता है वो लोगों के लिए उतना सरल नहीं होता।
0: जी जी मैडम, अक्सर विधिक सहायता के लिए ऐसे लोग आते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं
1: जी
0: होते, गरीब
1: बिल्कुल
0: वर्ग के होते हैं और कानूनी बातों को वो समझ नहीं पाते,
1: जी
0: तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर या विधिक सहायता के कर्मचारी आवेदन फॉर्म भरने में उनका पूरा सहायता करते हैं। इसमें कुछ बेसिक डिटेल और बहुत ही कम दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र जैसे सामान्य दस्तावेज ही लगते हैं,
1: जी
0: तो उन दस्तावेजों के आधार पर वो उनकी जानकारियाँ पूरी खुद से भर देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके।
1: जी तो रविंद्र जी, ये तो हो गया कि हम वहाँ जाकर मिल सकते हैं वकील से,
0: जी
1: पर इसके अलावा कोई और भी तरीका है जिससे हम इस विधिक सहायता केंद्र से संपर्क कर सकें?
0: जी मैडम, बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति घर बैठे ही विधिक सहायता का फॉर्म भरना चाहे
1: जी
0: तो नालसा के द्वारा nalsa.gov.in
1: जी
0: एक वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जो व्यक्ति कंप्यूटर के जानकार हैं या घर बैठे मोबाइल से भी अगर फॉर्म भरना चाहें तो ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से वे आवेदन कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जैसे आवेदन फॉर्म भरने में या ऑनलाइन पोर्टल में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या यदि उनको कोई कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए नालसा के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर का भी संचालन किया जा रहा है जो कि nalsa1510 है।
1: जी
0: इसमें पूरे देश भर के वकीलों को और जो लॉ में एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से यदि उनका कोई भी कानूनी दिक्कत उस समय आता है
1: जी
0: तो तत्काल उसका समाधान उसमें किया जाता है।
1: बिल्कुल
0: ये पूरी तरह से निःशुल्क है मैडम, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस देनी नहीं पड़ती है
1: जी
0: और हमेशा एक्सपर्ट अवेलेबल रहते हैं। जैसे
1: बिल्कुल
0: किसी समय यदि कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम होती है तो
1: जी
0: कॉल तत्काल ही किसी दूसरे एक्सपर्ट को ट्रांसफर हो जाता है। या
1: अच्छा
0: इसमें एक सुविधा और भी है मैडम कि यदि तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं कोई एक्सपर्ट
1: जी
0: तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली उनके आईडी पे चले जाता है
1: जी
0: और वे तुरंत जिस भी समय वो अवेलेबल हो तुरंत ही कॉल बैक करेंगे और आपका प्रॉब्लम पूछेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका निराकरण करने का प्रयास करते
1: जी
0: हैं।
1: बहुत अच्छी सुविधा आपने बताई रविंद्र जी,
0: जी
1: इससे लोगों को मुझे उम्मीद है काफ़ी मदद मिली होगी और मन से एक तरीके का डर भी चला गया होगा।
0: जी
1: रविंद्र जी, अब हम चाहेंगे आप हमें लोक अदालत के बारे में बताएं।
0: मैडम, जैसा कि लोक अदालत नाम है, लोक का मतलब ही होता है जनता का अदालत।
1: जी
0: ये सामान्य अदालत की तुलना में अलग प्रकार का अदालत है जो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही आयोजित कराया जाता है।
1: जी
0: इसमें आपसी राजीनामा के आधार पर पक्षकारों के विवादों का निराकरण किया जाता है। ऐसे मामले जिनमें राजीनामा हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मामले हों, जैसे कई आपराधिक मामले हैं जिनमें राजीनामा का प्रावधान है, या सिविल मामला है, या कोई लेन देन का मामला है, संपत्ति संबंधी विवाद है, या घरेलू मामला है जिसमें राजीनामा हो सकता है, वहाँ पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर मामले का निराकरण किया जाता है। सबसे ज्यादा फायदा इसमें यह है मैडम कि जैसे अगर आप किसी रेगुलर लोक अदालत में आवेदन करते हैं तो आपको कोर्ट

0: फीस पे करना पड़ता है, वकील
1: हम्म,
0: रखना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कई पेशी
1: बिल्कुल
0: चलती है, इसी के साथ कई अन्य आवेदन और कानूनी प्रक्रिया का एक अच्छा खासा लंबा प्रक्रिया पालन करना पड़ता है।
1: जी,
0: लेकिन लोक अदालत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी के सामने दोनों पक्षकार जाएंगे और जो भी समस्या होता है उसका आपसी बातचीत के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जाता है।
1: जी
0: जहां निराकरण हो जाता है वहां तत्काल ही उनको निर्णय दे दिया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, इसलिए वो हर जगह मान्य है।
1: जी
0: तो इससे पक्षकार जो लंबी पेशियों में लंबी कतारों में लगे रहते थे, अब उनको सामना करना नहीं पड़ता। एक ही
1: जी
0: बार में उनके मामले का अंतिम निराकरण हो जाता है, कोर्ट
1: बिल्कुल
0: फीस पे करना नहीं पड़ता है, तो कोर्ट फीस की भी बचत हो जाती है।
1: जी
0: एक ही दिन में निराकरण हो जाता है, इसलिए उनको कई कई सालों तक इंतजार करना नहीं पड़ता है। इसमें वकील रखने की भी आवश्यकता नहीं है मैडम,
1: जी
0: इसमें वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए ये लोक अदालत जनता की सुविधा के लिए, जनता का जनता के लिए अदालत ही वास्तव में लोक अदालत है।
1: जी सर, आगामी लोक अदालत कब है, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी, आगामी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाने वाली है।
1: जी रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की हमारे श्रोताओं को दी। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे आप श्रोताओं को महिलाओं, बच्चों और माता-पिता के संबंध में भरण पोषण कानून के बारे में कुछ जानकारी दें। ये प्रावधान क्या है, हम चाहेंगे आप हमें बताएं।
0: भरण पोषण का प्रावधान पुराने दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 में था।
1: जी
0: वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो जाने के बाद धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका प्रावधान दिया गया है, जिसमें वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और अपना भरण पोषण कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं,
1: जी
0: तो वे न्यायालय के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। जैसे ये विशेष रूप से बनाया गया है कानून की पत्नी, बच्चे तथा माता पिता जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं, वे भरण पोषण मांग सकते हैं।
1: जी
0: पत्नी है यदि वो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, बच्चे हैं चाहे वो उनके वैध वारिस हों, वैध बच्चे हों या अवैध संतान हो, दोनों ही प्रकार के संतान भरण पोषण मांग सकते हैं
1: हाँ
0: जब तक कि
1: हाँ
0: वो बालिक ना हो जाए।
1: जी
0: यदि कोई बालिक पुत्र है
1: हाँ
0: परंतु वह शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है और
1: जी
0: अपना भरण पोषण नहीं कर पाता, तो वह
1: जी
0: भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। और यदि माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं अब अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं, तो वो भी अपने पुत्र से भरण पोषण मांग सकते हैं।
1: जी सर, कितनी राशि मिलती है भरण पोषण के लिए और क्या ये राशि कम या ज्यादा हो सकती है?
0: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को भरण पोषण के आवेदन का निराकरण करने के समय देखता है। जैसे जिस व्यक्ति से भरण पोषण की राशि वसूलनी है उस व्यक्ति का आय का स्रोत क्या क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी अपनी कितनी जिम्मेदारियां हैं और जिस व्यक्ति को भरण पोषण दिया जाना है उसका रहन सहन कितना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति जिसको भरण पोषण देना है उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो
1: पूरी हो
0: सकें।
1: सके, बिल्कुल
0: तो इसके लिए कोई निर्धारित राशि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है,
1: जी
0: ये परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय के द्वारा निराकृत किया जाता है।
1: जी वकील साहब, आदेश का पालन न करने पर क्या सजा मिलती है इस
0: इसमें
1: प्रावधान के तहत?
0: जी, यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश पारित किया गया है
1: जी
0: जानबूझकर भरण पोषण देने में अवहेलना करता है, जानबूझकर वो भरण पोषण नहीं देता है, तो सबसे पहले तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि न्यायालय चाहे तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।
1: जी
0: गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर भी अगर वो भरण पोषण नहीं देता है तो सिविल कारावास में भी डाला जा सकता है।
1: हाँ हाँ
0: इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति से भरण पोषण वसूलना है उसके संपत्ति की कुर्की हो सकती है, जब्ती हो सकती है या उसके वेतन से कटौती हो सकती है, और फिर भी यदि वो व्यक्ति जानबूझकर बार बार भरण पोषण देने में चूक करता है तो इसे न्यायालय अपने अवमानना समझकर अवमानना की कार्रवाई भी कर सकता है।
1: जी रविंद्र जी, फैसला आने में काफी समय लग जाता है, ऐसे में जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उसका जीवन किस तरह चलेगा, उसके लिए क्या उपाय है?
0: जैसा कि भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद और निराकरण होने के बीच में कई पेशी हो जाती है और इस बीच में पक्षकार को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
1: जी
0: जैसे यदि पति या पत्नी हैं और वो अलग अलग रह रहे हैं तो उनके आने जाने का खर्च, खुराक खर्च
1: हाँ
0: और वो खर्चे, इस बीच में अंतरिम भरण पोषण का एक प्रावधान दिया गया है।
1: जी
0: अंतरिम भरण पोषण विशेष रूप से इसीलिए बनाया गया है कि जब तक भरण पोषण का आवेदन निराकृत नहीं हो जाता और अंतिम रूप से ये निष्कर्षित नहीं किया जाता कि कितना भरण पोषण राशि आवेदक को दिया जाए या ना दिया जाए, इस बीच में उसे एक अस्थायी राहत के रूप में अंतरिम भरण पोषण दिया जाता है, जिसका मुख्य

0: उद्देश्य ही यह है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक पीड़ित पक्ष को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके। और अभी जो नया आपराधिक कानून आया है, इसमें समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है
1: जी,
0: तो 60 दिनों के भीतर अदालत को अंतरिम भरण पोषण का आवेदन का निपटारा करना अनिवार्य है
1: जी।
0: और यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि अंतिम फैसला नहीं कर दिया जाता।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को बताई। सर, अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या शादीशुदा बेटी से भी माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
0: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई माता पिता है और उनकी एकमात्र पुत्री है या पुत्री ही पुत्री है, कोई पुत्र नहीं है और
1: हाँ।
0: उन पुत्रियों का विवाह हो चुका है, तो केवल शादी हो जाने मात्र से वो अपने माता पिता के प्रति दायित्व जो होता है उससे वो बच नहीं सकते। तो एक विवाहित पुत्री से भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है
1: जी। और क्या सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है?
0: हाँ मैडम, बिल्कुल, सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। यदि उसके खुद के संतान ना हो, सगे
1: हाँ।
0: पुत्र पुत्री नहीं है, तो सौतेली माता पिता भी भरण पोषण मांग सकती है यदि वो अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ है तो।
1: जी श्रोताओं, आज कार्यक्रम कानून की बात में हमने जानकारी ली नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान की, निःशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर

0: प्रतिदायित्व जो होता है उससे वो बच नहीं सकते। तो एक विवाहित पुत्री से भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है।
1: जी, और क्या सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है?
0: हाँ मैडम, बिल्कुल, सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। यदि उसके खुद के संतान ना हो, सगे
1: हाँ
0: पुत्र पुत्री नहीं है, तो
1: जी,
0: सौतेली माता पिता भी भरण पोषण मांग सकती है, यदि वो अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ है तो।
1: जी श्रोताओं, आज कार्यक्रम कानून की बात में हमने जानकारी ली नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान की, निशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे श्रोताओं के जरूर काम आएगी। और अब प्रतिमा अजमानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: कार्यक्रम कानून की बात में अभी आप सुन रहे थे निशुल्क सहायता योजना, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान। इस विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ श्री रविंद्र कुमार साव से ली गई भेंट वार्ता। भेंटकर्ता थी प्रतिमा अजमानी। ये आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति थी। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य
7: घर। पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
8: बेटा,
7: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
8: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
7: कहाँ
9: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
7: आरबीआई कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
12: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
11: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
12: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
11: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
12: क्यों?
11: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
13: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
14: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गोडबोले दंपत्ति को भी पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के सभी डाकघरों में अगले दो दिन अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार बीते

वर्ष किसानों को वितरित की गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है। इसके तहत इस वर्ष किसानों को यूरिया की 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी, शेष 20% मात्रा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी या उसके बदले नैनो यूरिया दिया जाएगा। डीएपी वितरण भी पिछले वर्ष के मुकाबले 60% ही किया जाएगा। शेष 4% मात्रा के लिए वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान को नैनो उर्वरक लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह वैकल्पिक होगी। गौरतलब है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 25 मई को नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर आकाशवाणी नई दिल्ली अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रेल बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने वाले तक स्थान पर रुककर रील फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार राज्य में करीब 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर से अधिक डीजल का भंडार उपलब्ध है। किसानों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए ईंधन की नियमित आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 मई से ड्रम और जेरिकेन में पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग स्थानों से डंप बरामद किया है। डीआरजी बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पल्लाहूर और जपमरका के बीच जंगल में छिपाकर रखे गए नक्सल डंप को बरामद किया। इसमें बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल, फायर कार्टेज, AK-47 और SLR का खाली कार्टेज सहित विभिन्न विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम मरकाबेड़ा, आदनार और एलूर के बीच जंगल से भी नक्सल सामग्री बरामद की है। इसमें 3 12-बोर की राइफल, बीजीएल लॉन्चर, बारूद और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सहित विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। उधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सली डंप बरामद किया। डंप से हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने बीती 22 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया। हालांकि वापसी के दौरान अत्यंत कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आज हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के उच्च अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अमिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों यानी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। प्रदेश में संचालित प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालयों के वर्तमान सत्र में प्रवेश के लिए आयोजित प्राक चयन परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों से कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र या उत्तरों से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा और आपत्तियां 30 मई को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया पुलिस ने धान खरीदी में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए साल्हे ऊना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इन पर आरोप है कि बिना धान की वास्तविक आवक के ही ऑनलाइन एंट्री कर करीब 99 लाख रुपये का गबन किया गया। इस मामले में सहायक खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में एक दो स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवा के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है जिसके कारण गर्मी से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं आज रायपुर में 43.6, बिलासपुर में 43.4 और जगदलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच विशेषज्ञों ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों ने पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और पूरे शरीर को ढक रखने की सलाह दी है। साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कबीरधाम जिले के एक राइस मिल में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी हुआ चावल भी बरामद कर लिया गया है। बालोद जिले के ग्राम सिवनी और देउर तराई क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस ने तांदुला नदी तट पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बारनामापारा अभयारण्य के पास देवपुर में बच्चों के लिए विशेष नेचर कैंप का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर बलौदाबाजार वन मंडल के विभिन्न वन परिक्षेत्रों और अभयारण्य क्षेत्रों में जन जागरूकता और सहभागिता आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत सारंगढ़ में वस्तु प्रदर्शनी सह विक्रय मेले का आयोजन किया गया। मेले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जनजातीय कारीगरों ने हिस्सा लिया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। रायपुर पुलिस ने पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जांजगीर के करही गांव में करीब 1 महीने पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बिटकॉइन में निवेश कर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने 1 आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी

0: भी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गोडबोले दंपति को भी पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के सभी डाकघरों में अगले दो दिन अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: थोड़ी देर में
7: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए आपको कल यानी सोमवार के कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षणों से रूबरू करा दें।

रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर यामिनी का प्रसारण समय होगा रात्रि 10:00। हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:00। हमारे ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे शाम 7:20 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय होगा शाम 7:05 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन सकेंगे शाम 5:00। गैर फिल्मी गीतों व गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दोपहर में 2:30 पर। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर गोसाइन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 पर। खेती की बात एवं खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे प्रातः 6:45 एवं दोपहर 1:05 पर। शीर्षक गीतों का कार्यक्रम चयन का प्रसारण समय होगा दोपहर 12:30 पर। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे दोपहर 12:00। हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन के 11:05 पर। आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम फोनिंग आप सुन सकेंगे प्रातः 10:00। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:00। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर।

कल यानी सोमवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण और आज के शेष कार्यक्रमों में आपके लिए खास है रात्रि 8 बजे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। और शाम 7:20 पर वक्त होगा हमारे किसान श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का। और अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

मेहंदी हसन की आवाज़ में आप ये गज़ल अभी सुन रहे थे। शब्द रचना है तस्लीम फाजली की। कार्यक्रम रजनीगंधा में लीजिए सुनिए अगली गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

कार्यक्रम रजनीगंधा की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं अशोक खोसला की आवाज में ये गजल। शब्द रचना है जफर गोरखपुरी के।

अशोक खोसला की आवाज़ में कार्यक्रम का अंतिम गज़ल अभी आपने सुना। कार्यक्रम रजनीगंधा बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

जम्मो किसान भाई मल्ला बिरजू भैया के राम राम। किसान भाइयों, गर्मी तो ढेरच पड़त है और ऐसे में तनिक बच के रहना जरूरी है। और भाई साथ साथ जो हमर पशु हैं, जो पक्षी हैं, वो मल्ला देखना जरूरी है। काबर कि भाई गर्मी से देखिए कई तरह के समस्या हो जाते। तो पहले सबसे पहले तो स्वास्थ्य के ठीक रखे पर जरूरी है कि हमन धूप से बची, पानी पी के चली और कहीं जाए तो भाई सिर पे कपड़ा भी डाल ली। किसान भाई, जब हम धूप में चलथन तब हमला और कहीं पेड़ के नीचे रुकथन तब हमला पता चलते कि भाई पेड़ कितना ज़रूरी है। भाई छाया खातिन तो ज़रूरी है ही है। और देखिए अभी आम के मौसम भी है, आम भी भेटाते, छाया भी भेटाते, तो पेड़ के महत्वला तो हमन जानथन। और हमन बात करथन कि भाई जिए बर पेड़ पौधा बड़ा ज़रूरी है। और किसान भाई, जब हम पर्यावरण के बात करते हैं, पर्यावरण के मतलब हमर जो चारों तरफ मौजूद है, हवा, पानी, मिट्टी, ये जम्मो जात जो पर्यावरण है वो जीवन पर बड़ा ज़रूरी है। कहें कि पर्यावरण से ही हमला पानी मिलते, हवा मिलते और जिए कर जो संसाधन है वो भेटा थे। तो ज़रूरी है कि जो संसाधन है ओकर सुरक्षा, ओकर संरक्षण हम सबो झन मिल के करी। हमन सोचथन कि भाई एक काम जो है पर्यावरण संरक्षण कर काम जो है सरकार करा है, चाहे दूसर झन करा है, चाहे दूसर मन से क्या है, लेकिन भाई ये काम जो है सबो झन के है। काहे कि जीवन सबकर एकरे से जुड़ी से, और सबो झन सांस ले था, सबो झन के पानी चाहिए, तो जिम्मेदारी भी सबकर बनत है कि सबो झन हमन मिल के जो है केला बचाई। और किसान भाई, बचाना भी जरूरी है, क्या कि जीवन जरूरी है। तो किसान भाई देखिए, मैं बात करते हैं कि भाई पेड़ कितना जरूरी है। और पेड़ एकर पर जरूरी है कि भाई जो हमन सांस लेथन, ऑक्सीजन जो जिला थी हमन, वो बड़ा जरूरी है। और ओकर पर जरूरी है पेड़, पानी बड़ा जरूरी है, ओकर भी बर भी जरूरी है पेड़। तो ये दोनों की सुरक्षा तो पहला नंबर पर रखना बड़ा जरूरी है। और अभी जो हम देखथन कि भाई हमारे जो क्षेत्र है, पहले कर हम से बात से हम तुलना करथन कि हमारे क्षेत्र में इतना वन संसाधन रहीस, इतना जंगल रहीस, इतना पेड़ पौधा रही, लेकिन धीरे धीरे उमन कर जो घनत्व है, उमन कर जो संख्या है घटत जात है। और एकर असर हम देखथन कि हमारे क्षेत्र में इतना तापमान पहले कभी नहीं रहीस, लेकिन हम देखथन कि दर साल तापमान बढ़त जात है। और वैज्ञानिक मन कहते हैं कि हमारे देश में सबसे गर्म, दुनिया में जितना गर्म स्थान है, सबसे गर्म जो स्थान है वो हमारे देश में है। तो कहे के मतलब कहीं ना कहीं तो हम कुछ ऐसा कर जा रहे हैं जेकर से हमर क्षेत्र कर तापमान जो है, हमारे देश का कहली तापमान बढ़ता है। तो एक बारे में सोचना जरूरी है कि भाई कौन कस दुनिया का सबसे गर्म स्थान जो है हमारे देश में आएगी। और भाई कहीं कहीं तो अभी हम देखथन मौसम कर

समाचार तो हमें पता चलते कि 48 डिग्री सेल्सियस तो 49 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान पहुंचा था। तो किसान भाइयों, अभी हमन छत्तीसगढ़ के बात करी या फिर उत्तरी सरगुजा जहां हमन रसन वहां के बात करी तो 41 डिग्री 42 डिग्री चलता है तापमान। और ऐसे में सोच ली कि भाई जो पशु पक्षी हैं, भाई हमर तो हालत खराबे चाहे, जो पशु पक्षी हैं उमन कर हालत कितना ख़राब होई। और ऐसे में ज़रूरत पड़ते पानी के भी, तो जब पेड़ नहीं रही तो पानी कर भी स्थिति वही हो जाएगी। और धीरे धीरे हुआ था ये पातलावन महसूस करतन कि आज से 10-20 बच्छर पहले हमन पानी देखते रहन कि हमारे ढोड़ी में रही, हमारे कुआँ में रही, हमारे हैंडपम्प में रही, हमारे डबरी में पानी रहत रहीस। लेकिन आज देखतन कि वो पानी हर तो खत्माता है, भाई इतना तापमान में कहाँ पानी बाछी। तो कहे कर मतलब है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होता है जेकर असर जो है जलवायु परिवर्तन के रूप में दिखत है। और जलवायु परिवर्तन के किस वैज्ञानिक मन बात कहत है तो भाई सबले पहले तो मन कहते हैं कि भाई हमन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कर कटाई करते हैं नौकरों से जलवायु परिवर्तन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ खोद डारे नौकरों से जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम के चक्र बिगड़ता है, मौसम खराब होता है। तो ये सब की रोके पर किसान भाई हमन कम से कम इतना तो काम कर ही सकत हन कि हमर जो बस में या जो हमन कर सकत हन कि जो पेड़ है हमर पास ओकर सुरक्षा कर सकत हन, हमर जो खाली जगह है वहाँ पे नया पेड़ लगा सकत हन, और जो हमन पेड़ लगाथन ओकर सुरक्षा कर सकत हन। तो इतना काम तो हमन सबकी जिम्मेदारी बनत है कि भाई कोई भी काम ला हमन जो है सामुदायिक तौर पे ली या व्यक्तिगत तौर पे ली, यदि हमन को पेड़ मन की सुरक्षा करत हन तो ऊकर से हमारे जीवन जो है सुरक्षित रहें। और सबले बड़खा दुगो बात कि भाई जिए बर का चाहिए, जिए बर चाहिए हवा, और हवा पेड़ से मिलते, पानियों जो है पेड़ जो पानी लरोक के रखते, बारिश ज़्यादा करवाते, मौसम जो है तनिक ठंडा रखते, तो एकर बर पेड़ जो है कह ली कि भाई बड़ा ज़रूरी है और पेड़ के संरक्षण भी बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी हम देखते हैं कि भाई जैसे वन विभाग हो गई या फिर दूसरे विभाग जो हैं उद्यान विभाग जो हैं पेड़ जो है भाई हमारे गांव के आसपास लगाते हैं या रोड में लगाते हैं, तो हमन सोचते हैं कि भाई ये दूसर का पेड़ है और दूसर का जिम्मेदारी है। तो किसान भाई ये तो बड़ा गलत बात है हमर खातिर कि भाई ये पेड़ हमरे काम आई, ये पेड़ जो है हमारे पर्यावरण ला सुरक्षित रखी, हमारे पानी और हवा ला सुरक्षित रखी, तो एक सुरक्षा भी हमने कर जिम्मेदारी बनत है। हमन गरु बकरी ला चराए जाथन और गरु बकरी मन जो है पेड़ के चेर देते पेड़ ला जो रोड के किनारे लगी से या फिर कहीं प्लांटेशन पौधरोपण हुई से ओहला चेर देते। तो ये हमर जिम्मेदारी बनत है कि थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाना पड़ी, कहें कि एकर से जीवन जुड़ी से, पर्यावरण के बात जुड़ी से, सुरक्षा के बात जुड़ी से। किसान भाई एक तो बात मैं पेड़ के कहता हूँ कि हमें अधिक अधिक पेड़ लगाना है। और जब पेड़ लगाए के बात करते हैं तो भाई अभी देखिए मौसम भी आता है, मौसम कहकर मतलब है कि अभी मानसून देखिए आए वाला है, हमन पहले से तैयारी कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पेड़ लगाना है। और भाई मैं कहता हूँ कि अपन जन्मदिन में भी पेड़ लगा सकते हैं, अपन दाई के नाम में भी पेड़ लगा सकते हैं, अपन दाऊ के नाम में भी पेड़ लगा सकते हैं, कहकर मतलब एक याददाश्त तो हमन से जुड़े रहो और दूसर पर्यावरण के सुरक्षा होई। हमन फलदार वृक्ष भी लगा सकत हन जेकर से फल तो बेटाबे करी, साथ में हमर पर्यावरण भी ठीक रही। एकर अलावा जो हमर कह ली कि गाँव कर स्कूल आए, गाँव कर जो जहाँ पेड़ हमन लगा सकत हन, जो हमर ग्राम पंचायत के आसपास जो जमीन है वहाँ पेड़ लगा सकत हन, फलदार पेड़ लगा सकत हन, जेकर से हमला फल भेटाही। और फल भेटाही तो देखिए हमर स्वास्थ्य भी बढ़िया रही, हमर पर्यावरण भी बढ़िया रही। तो किसान भाई एकर बारे में हमन सोच सकत हन। दूसरी बात पर्यावरण का रहते कि भाई ठीक है कि भाई हमें पेड़ ला तो बचाना है, लेकिन पानी ला भी बचाना बड़ा ज़रूरी है। और जब पानी बचाए कर बात आते तो भाई यही बात आते कि भाई जब बरसात में पानी होते तो पानी हर बह के चल देते, तो पानी रोके कर कौन कौन सा हम इंतजाम कर सकत हन, व्यवस्था कर सकत हन, एक बारे में भी सोचना बड़ा ज़रूरी है। कहें कि अभी हमन तो देखत हन कि पानी के संकट आएगी से हमारे जो पशु आए वो मतलब पानी नहीं भेटात है, तो पानी ला मन रख कैसे सकत हन, एक बारे में विचार करना जरूरी है कि हमारे गांव में फिर ज़्यादा से ज़्यादा डबरी हो, हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा तलवा हो, तालाब हो, अमृत जलाशय हो,
ताकि हम बरसात के पानी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सके। जब ज़्यादा पानी इकट्ठा कर

तो हमर पशु पर भी पानी भेटाई, हमर जो जमीन के नीचे जल स्तर है वह बने रही, हमर जो खेती कर बात है वह पूरा होई। तो किसान भाई जल संरक्षण के बारे में भी सोचना है, और खासकर जो हमारे किसान भाई हैं आजकल जो टपक विधि सिंचाई करा है वहूला अपनात हैं, ओकरों से पानी हमन बचाए सकत हन। हम देखते हन कि भाई कभी कभी जो है मशीन ला चालू कर देते हैं, ओकरों से व्यर्थ पानी बहत रहते तो ओहूला बंद करना है। जगह जगह भाई देखी जल जीवन मिशन के नल लगी से नलों ला हमन खुला छोड़ देते हैं। तो कहे कर मतलब ये जिम्मेदारी ला हमला उठाना पड़ी, हर व्यक्ति करे जिम्मेदारी है कि पानी ला व्यर्थ झेन बह दी और ओके रोक के रखी, काबर की जल ही जीवन है। किसान भाई जब हम पर्यावरण के बात करते हैं तो ये भी बात करते हैं कि भाई हमर जो प्लास्टिक है चारों तरफ जो रीते तीते फेंकत रहन, एक से भी प्रदूषण फैलते, एक से मिट्टी भी खराब होते, पशु मन भी खाए के बीमार होते, तो ओकर भी प्रयोग कम से कम करना है। एकर जगह जो है हमारे कपड़ा या जूट के या फिर दूसर कोई विकल्प हो तो ओकर प्रयोग हमन कर सकत हन। एकर अलावा बिजली भी बचाना बड़ा जरूरी है, और देखत हन कि अभी जो हमर कहली कि दुनिया के स्तर पर विश्व स्तर पर जो स्थिति है वो हिसाब से भी हमला चलना जरूरी है, हमन के पेट्रोल और डीजल भी बचाना जरूरी है। तो कब कहाँ जाना है कैसे जाना है एकर बारे में भी सोचना जरूरी है। कहें कि भाई ये जो पेट्रोल और डीजल होते ये तो हमारे दूसर देश से मंगाथन, तो यहू को एक जो सदुपयोग है ओके करना जरूरी है ताकि हमारे देश पे या फिर हमारे जो मन लोग मन से हैं उन पे ज़्यादा भार झेन पड़े, तो एक बारे में भी सोचना जरूरी है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा भाई पैदल चल सकत हन, साइकिल का उपयोग कर सकत हन, या फिर जो सामूहिक कह ली कि भाई जो सामुदायिक परिवहन होते हैं ओकर से ज़्यादा हमन प्रयोग कर सकत हन। तो किसान भाई कहे कर मतलब है कि भाई ये जो सब चीज़ है हम ही मर बड़ा है और एक हमन कैसे सदुपयोग कर सकत हन हर व्यक्ति के सोचना जरूरी है। कहें कि ये सबकर जरूरत कर चीज़ है, और एला हमन यदि समझदारी से और एकर सदुपयोग नहीं करबो तो एकर कहले की प्रभाव हमला भुगतना पड़ी। तो बड़ा जरूरी है कि हमन पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो छोटा छोटा कदम है ओके हमन सही कदम जो है ओला उठाई। और एक बात और कहूँ किसान भाई कि भाई पर्यावरण में मिट्टी भी आते माटी भी आते, ओकर सुरक्षा ओकर भी संरक्षण के बारे में सोचना बड़ा जरूरी है कि हमन ज़्यादा से ज़्यादा जो रासायनिक दवाई या रासायनिक खातु प्रयोग करत हन ओकर बारे में भी सोचना जरूरी है। कहें कि एक से भी हमारे पर्यावरण प्रभावित होते हैं, हमारे हवा प्रभावित होते हैं, हमारे पानी प्रभावित होते हैं, हमारे उत्पादन प्रभावित होते हैं, हमारे स्वास्थ्य भी प्रभावित होते हैं। तो एक बारे में भी सोचना जरूरी है कि भाई कैसे जो है हमन ज़्यादा तो नहीं धीरे धीरे कैसे एक उपयोग ला कम कर सकत हन, और जो जैविक खातु है जो जैविक दवा है ओकर हमन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रयोग करके अपन पर्यावरण ला बचा सकत हन, अपन स्वास्थ्य ला बचा सकत हन और एक बहुत बढ़िया दुनिया बना सकत हन जिनमें रोग राय कम रहे और सभी जन स्वस्थ रहें। तो एक बार भी जरूरी है कि हमन जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ी। तो किसान भाई देखिए गोट बात तो ढेरे जाए लेकिन मैं कहता हूँ कि गोट गीत सुन लेते हैं तो हम गोट बात और करबो।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक

0: से किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाई आज संदेश मल्ला सुनें और एक पहले एक गोट गीत सुनें जला गात रहे गुलाब सिंह पैकरा। किसान भाई एक गोट समाचार और मन खातिर कि भाई भारत सरकार जो है वर्ष 26-27 खातिर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है और घोषित कर दी से, तो देखिए ये में गेहूं कर जो समर्थन मूल्य है वह है 2,550 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों कर 6,200 रुपया प्रति क्विंटल, चना कर 5,875 रुपया प्रति क्विंटल, धान सामान्य जो है 2,441 रुपया प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए कर 2,461, मूंग कर 8,780 रुपया और अरहर कर 8,450 रुपया प्रति क्विंटल घोषित करेल गई से, और एक साथ मकई कर भी 2,410 रुपया समर्थन मूल्य घोषित करेल गई से। तो किसान भाई ये तो रही समर्थन मूल्य कर बात, और मैं कहत हूँ कि भाई अभी अराउंड मन से मैं गोठियात भी रहें कि भाई स्वस्थ रहे खातिर पर्यावरण संरक्षण या फिर पर्यावरण के ठीक रहना बड़ा जरूरी है, क्या कि जब हमन स्वस्थ रहो तबे हमन अपन काम कर पाबो और जब काम कर पाबो तबे हमन आगू विकास कर पाबो, और स्वस्थ रहे पर बड़ा जरूरी है कि हमन आस पास जो है सफाई रखी, स्वच्छता रखी, क्या कि देखी कई ठन बीमारी से बचे कर एक ही गोट उपाय है कि भाई अपन आसपास जो है हमन स्वच्छता रखी, साफ सफाई रखी, और हमन करबे करथन कहें कि सफाई कर महत्व ला सब झन जानबे करथें। और तो किसान भाई विशेषकर आजकल जो गर्मी के मौसम चलत है भाई, देखिए मैं एक तो पानी पिए कर समस्या हो जाते, पिए कहे कर मतलब है कि पानी कर जो मात्रा है वो कम हो जाते और जो संसाधन है वह मन प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे समय में देखिए गर्मी में साफ पानी पीना बड़ा ज़रूरी है। और कह ली कि भाई जो आसपास साफ सफाई है, मैं बात भी करत रहें कि भाई आसपास जो गंदगी है प्लास्टिक है वह मन साफ सुथरा रखना जरूरी है, चाहे वो हैंडपम्प कर बात हो चाहे कुआं कर बात हो, वहाँ भी जहाँ से हमन पानी निकालते नल के बात हो, जहाँ से हमन पानी अपन बाल्टी भरतन वहाँ भी साफ साफ सुथरा रखना बड़ा जरूरी है। एकर अलावा अपन घर में भी साफ सफाई भाई, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो भाई देखिए कोई भी खाए वाला चीज़ों के तो ढक के रखें, क्या कि भाई मक्खी में आके बैठते हैं और फिर बीमारी फैलते। एकर अलावा जो किसान भाई पानी ला भी ढक के रखें, और जब पानी निकालें तो पानी निकाले कर बर्तन से निकालें, काबर की हाथ डुबाए से देखिए पानी भी प्रदूषित हो जाते। तो कह कर मतलब किसान भाई तो जम्मो बात ला जानते, लेकिन जरूरी है कि भाई जो लड़का छुआ है वो मल्ला सिखाना जरूरी है कि जीवन में स्वच्छता कितना जरूरी है, और स्वच्छता खातिर अपन घर के साथ साथ अपन व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है, और एक अलावा जो हम बात करते हैं कि सामुदायिक स्वच्छता वह जरूरी है। और किसान भाई हम भाई जो शौचालय के प्रयोग करथन वो तो करबे करथन, वो ला साफ सुथरा रखना जरूरी है, कहें कि भाई गंदगी से कई तरह की बीमारी फैलते, कई तरह के कीटाणु आते, और देखिए जहाँ साफ सुथरा साफ सफाई रहते तो वहाँ देखिए बैठे कर भी मन करते, बात करे कर भी मन करते, लेकिन जहाँ गंदगी रहते भाई वहाँ बैठे कर भी मन नहीं करे न काम करे कर मन करते। तो साफ सफाई जो है, स्वच्छता जो है जीवन खातिर बड़ा जरूरी है, स्वस्थ रहे खातिर बड़ा जरूरी है, और चाहे वो स्कूल कर बात हो, ग्राम पंचायत कर बात हो, घर कर बात हो, सब जगह स्वच्छता से ही देखिए विकास हो, स्वच्छता से ही हमन स्वस्थ रहो, स्वच्छता से ही हमन आगू बढ़ो। किसान भाई देखिए जब हमन पर्यावरण के बात करथन तो खेती के हमन बात करथन भाई, चूँकि हमन किसान हन तो अभी राहुल मन से मैं गोठियात भी रहन कि भाई कम से कम जो है हमन रासायनिक खातु और रासायनिक दवा के हमन कैसे प्रयोग करी, और एकर खातिर देखी वैज्ञानिक मन हो चाहे कहली सरकार कर भी यही मनसा है कि हमारे जो किसान भाई हैं जैविक खेती को बढ़ें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। तो ये प्राकृतिक खेती का है किसान भाई ये बात समझता है, लेकिन फिर भी हमन समय समय पर अपन जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो मन से गोट बात करत रहते हैं, बात ला समझत रहते हैं कि भाई ये जो कहली कि जो प्राकृतिक खेती है ओहर का है। तो देखिए आज मोर गोट बात हुई से डॉक्टर

संदीप शर्मा जी से, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में। तो इनकर से गुड बात हुई थी कि भाई प्राकृतिक खेती कहाँ है और एक कैसे करल जाए, तो आइए गोट बात ला सुनल जाए। किसान भाई, आज हमारे कार्यक्रम में हैं डॉक्टर संदीप शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक और कार्यक्रम प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर से। तो डॉक्टर साहब से आज बात करल जाए कि भाई प्राकृतिक खेती का है और नवा कृषि में कैसे परिवर्तन लाही। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मोर यही है कि भाई ये प्राकृतिक खेती है क्या और किस

0: बजटिंग खेती भी करती, जैमे बिना खर्चा के एमें खेती करना प्राकृतिक खेती कहलाल। अभी जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषक और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्राकृतिक खेती में बदल जाए, ओकरे परिप्रेक्ष्य में लगभग देश में 10,000 से ऊपर बायो रिसोर्स सेंटर जरा BRC बोलती, वो अलग अलग गांव में अलग अलग जगह में वह शासन के द्वारा देहल जात है, जिनमें उनमें जो जो ब्लॉक मन में विकास खंड में प्राकृतिक खेती करत हैं, उनमें किसान मन के यहाँ बायो रिसर्च सेंटर के इकाई की स्थापना करत हैं और ओजक से सब किसान भाई बहन मल्ला प्राकृतिक खेती के उत्पाद हर मिली।
1: डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती की जरूरत का आन पड़ी से?
0: हाँ, जैसा हम शुरू में कहेंगे प्राकृतिक खेती मतलब रसायन मुक्त खेती। हमन देखा थी कि दिन प्रतिदिन हमन जो जमीन है ओकर उर्वरा शक्ति, ओकर स्वास्थ्य, ओकर भौतिक संरचना धीरे धीरे खराब होता है। अब वो धीरे धीरे हम देखा थी तो वह हमन के पानी में भी मिश्रित होता है, जो हमन पानी लपी थी ग्राउंड वाटर ओहू में जात है, वातावरण बहुत तेजी गति से ओकर नुकसान करत है। और हम देखा सबसे जो मुख्य ओकर वजह है कि हमन के स्वास्थ्य खराब होत है। आज हम देखब तो हर तीसरा चौथा आदमी चाहे वो शुगर से ग्रसित हो ही, चाहे वो ब्लड प्रेशर से, चाहे कई ऐसा बीमारी होत हैं कि ज़्यादा दूषित खाए से कि हमन के ऊपर बहुत परेशानी उठाना पड़त है। शुरू में हमन देखे रहन कि जैविक खेती चलत रहीस, तो जैविक खेती के बाद अब प्राकृतिक खेती आगे से जो बहुत पहले समय अगर खेती करत रहन। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि रसायन मुक्त मतलब हमन आस पास के चीज़ों के उपयोग करके हमन प्राकृतिक खेती करती,
1: तो कहे के मतलब कि लागत भी कम हो ही।
0: हाँ, लागत न के बराबर हो जाही प्राकृतिक खेती करे से। अब इमें एकर आवश्यकता का है पड़ीस, एकर का उद्देश्य है, इमें कौन कौन सा घटक है जेला हम किसान मन के बताब कि एला एला डालना है, तो तनी समय तुम उनके बताना चाहत हो। तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता का है पड़ीस, हम देखब कि आज के समय में हमन की खेती के जो जो में कास्ट है जिमें उमें देखब कि आधा माँ पैसा हर उमें खाद उर्वरक और रसायन में जात है। दूसर हम देखब कि जितना भी लाभदायक जीवाणु रहिन
1: हो,
0: चाहे हम सीधा तौर पर कही कि जो केचुआ मन रहिन, वो सब को सब मन मर गिन है। तीसरा हमन देखब कि हमन के वातावरण बहुत तेजी गति से प्रदूषित हुआ है। चौथा हम देखब कि जो भी हमन खाती ओकर हमन बहुत रासायनिक चीज खाती, जैसे हमन के स्वास्थ्य पे डायरेक्ट ओकर प्रभाव पड़त है, और डायरेक्ट हमन कीटनाशक आज के डेट में सेवन करा थी। तो ये हमन कई ये चीज़ के आवश्यकता के देखते हुए फिर हमन प्राकृतिक खेती की ओर गए ही। अब अगर उद्देश्य का है, अगर उद्देश्य मुख्य रूप से है कि किसान के जो खेती में लागत है वो लागत के न के बराबर करना, जेकर से उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और आय ओके ज़्यादा मिले।
1: बढ़िया।
0: दूसर चीज कि हमन खाद और उर्वरक पर निर्भर न रही, हमन देखती कि कितना दिक्कत का सामना उठाना पड़ेल और कितना महंगा खाद है, तो हमन की खाद उर्वरक के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ी। तीसरा जो मुख्य रूप से जो जमीन है ओकर भौतिक दशा सुधरत है, क्या कि धीरे धीरे धीरे अगर हम उनमें रासायनिक उपयोग करब तो धीरे धीरे धीरे वो जमीन बंजर हो जाए और उनमें आए वाला समय में ये स्थिति हो जाए कि उनमें उत्पादन पर ओकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ी, तो ओकर से हमन छुटकारा पा जाब। फिर हमन जो एकर प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद ला बेचब, वो उत्पाद ला बेचे में हमन के पैसा भी ज़्यादा मिली। फिर हम देखब कि जो आवश्यक जो लाभदायक जीवाणु हैं ओकर ज़्यादा संख्या बढ़ी, तो मिट्टी के भौतिक दशा सुधरी। मिट्टी के भौतिक दशा सुधरी तो हमें हवा और पानी चाहिए, जेकर से हमन के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिली। मिट्टी के जो हमन उपयोग करती ओकर अम्लीयता क्षारीयता भी बराबर में रही, न ज़्यादा अम्लीयता रही न क्षारीयता रही।
1: बिल्कुल।
0: कोई भी फसल ला हमन लगाब तो ओकर उत्पादन मिली, अंकुरण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हुई और पैसा कम लगी। ये सब हम देखा थी और हमन के जो पारिस्थितिकी है जो आसपास के उहर सब उहर बढ़िया बने रही। ये कल्पना के साथ हमन प्राकृतिक खेती करब।
1: बिल्कुल।
0: अब बात आई कि प्राकृतिक खेती करत ही तो इसमें कैसे

0: ऐसे करना है,
1: हो
0: का डालना है। तो हमन देखती कि हमन जो रासायनिक जो उपयोग करती ओकर हम अगर बीज बीज के अगर हम उपचार करती तो या तो कार्बेंडाजिम दवाई डालती रासायनिक, तो एकर व हमन के है बीजामृत बनाना पड़ी। खाद जो डालती हमन तो ओकर व जीवामृत है, घन जीवामृत है। कई बार हम रासायनिक में अगर हम कीड़ा या कीड़ा काटे वाला या जो चूसे वाला कीड़ा थे उमन के दवाई मारे खातिर रासायनिक उपयोग करती, ओकर जगह पे हमन निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, दसपर्णी, सतपर्णी ये सब के हमन के पूरा के उपयोग करके फसल उत्पादन जब करब तो ये प्राकृतिक खेती कहला ही।
1: बिल्कुल।
0: अब बात आता है कि प्राकृतिक खेती में बीजामृत कैसे बनी, काहे एला हमन रसायन मुक्त कहती, काहे में कम से कम पैसा लगत है। तो बीजामृत बनाए कुछ घलो सामान नहीं चाहिए, मात्र 5 किलोग्राम गोबर। अब इमें बात आई कि कौन सा गोबर, तो इमें हमन के देसी गाय के गोबर के उपयोग करना है। काहे को में जो जीवाणु का संख्या है वो बहुत मात्रा में है। तो अच्छा। जब भी हम प्राकृतिक खेती में कोई भी उत्पाद ला बनाब तो में हमन के देसी गाय के गोबर ला उपयोग करना है। अब हम बात बोल रहे थे किसान मन के जो मुख्य रूप से बीज उपचार करना आवश्यक रहल तो में हम बोला बीजा अमृत बनावा। तो बीजा अमृत बनवाए 5 किलोग्राम गोबर देसी गाय के, 5 लीटर गौमूत्र, 250 ग्राम चूना, 20 लीटर पानी और थोड़ा सा हमने में मिट्टी डालब सजीव मिट्टी। तो अब सजीव मिट्टी कहाँ जाके मिली, तो कोई भी पीपल या बरगद पेड़ के नीचे के एक मुट्ठी मिट्टी ला डाल के में हमन एकर बनाब।
1: बिल्कुल डॉक्टर, तो थोड़ा सा रोका था, मैं पूछे तो कि चूना कौन सा,
0: बुझा हुआ चूना।
1: अच्छा,
0: जो आसानी से मिल जाए।
1: हाँ, अच्छा, पीपल पेड़ के नीचे की मिट्टी ही का है।
0: हाँ, वो मिट्टी ऐसे कि वो पीपल पेड़ के नीचे की मिट्टी में अगर हम देखब खूब सारा लाभदायक जीवाणु, सजीव जीवाणु रहते। वो तो हमन खेती करती नहीं, बरगद पेड़ और पीपल पेड़ के नीचे तो हम जोताई गुड़ाई करती नहीं। तो ओजक का माटी ला हमन कति किसान के लेहे बर। अब बीजा अमृत बनाना है तो गोबर ला 5 किलो जो गोबर है ओला 20 लीटर जो पानी ले ही ओला पोटली में मिला के लटका देना है। एक 12 से 14 घंटा होके वही में छोड़ देना है।
1: बिल्कुल।
0: एक बार जो जो हमन तत्व बताए ही ओला मिला के उपयोग करना है।
1: बिल्कुल। तो इस तरह से जो प्राकृतिक खेती में जो जैविक दवा है उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो सवाल है मोर की जो खातू दवा तो बता दें, खातु के रूप में कैसे प्रयोग करें और कैसे खातू बनाएं। काबर की एक ठो ये बात जुड़ेल की जो प्राकृतिक खेती है उसमें पशुपालन जरूरी है।
0: हाँ, तो पशुपालन के बिना तो हमन के प्राकृतिक खेती का उत्पाद बन नहीं पाई।
1: हाँ,
0: है ना। तो प्राकृतिक खेती में हमन के गाय तो पालना पड़ी और वो भी गाय देसी गाय।
1: अच्छा,
0: के हमन के वो में चाहिए। अब जो बात हमन अगला जो करत थी कि खातु बर।
1: हाँ।
0: तो इमें जीवामृत है, घन जीवामृत है, तो एके हमन के बनाना है।
1: अच्छा,
0: अब एकर में बनाए बर भी का लगी, इमें भी वही गोबर,
1: बिल्कुल,
0: गौमूत्र, गुड़ इमें और सजीव मिट्टी।
1: हाँ।
0: और पानी।
1: बिल्कुल,
0: इला इमें लगी बनाए बर।
1: हाँ।
0: तो अगर इमें हम अगर इला बनाना कैसे है, तो 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम अपन के ले लेना है क्या बोलते हैं गुड़।
1: हो।
0: और सजीव मिट्टी ले लेना है। और एकर मिला के हमन के बेसन 2 किलोग्राम ले लेना है।
1: अच्छा,
0: और पानी 180 से 200 लीटर ले लेना है। हमन के एक मिला के एक 5 दिन में तैयार हो जाए। अब एक का करना है, हर मतलब दिन भर में 2 बार इला चलाना है।
1: अच्छा,
0: अब डंडा से।
1: हुँ.
0: अब चलाना कैसे है, तो घड़ी की जो दिशा में चले।
1: अच्छा,
0: वो दिशा में के
1: चलाना
0: है। चला के इधर तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बड़ा बढ़िया बताएं कि जो प्राकृतिक खेती है वो किसान भाई कैसे करें। और तो डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए ना और इतने बढ़िया बात बताएं कि हमारे जो किसान भाई हैं प्राकृतिक खेती करके भी अपन पर्यावरण, स्वास्थ्य और अपन आय में भी इजाफा कर सकत हैं। तो रोरे से आज गोट बात हुई, से गोट बात पर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई आज एक गोट बात ला सुनत रहें। आज कर जो हमार वरिष्ठ वैज्ञानिक रहें डॉक्टर संदीप शर्मा जी, जो कि बतात रहें कि भी प्राकृतिक खेती

कैसे समय की जरूरत है, वो खेती करके हमन कैसे पर्यावरण के रक्षा कर सकत हन और अपन आय भी बढ़ा सकत हन। किसान भाई देखिए गोट बात और करबो, आई एगोट गीत सुनत हन जे लगाते हैं विजय सिद्धार और उनकर संगतामन।

किसान भाई, अब थोड़ा सा मंडी भाव की बात कर लिया जाए तो देखिए, आज कर जो मंडी भाव रही उसमें धान रही 2370 रुपया प्रति क्विंटल, मकई रही 2400 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ रही 2430 रुपया प्रति क्विंटल, और सब्जी कर बात करी तो मैं टमाटर रही 1600 से 3200 रुपया प्रति क्विंटल तक। और मौसम के अब तापमान के भी थोड़ा सा बात करी हमन तो आज कर जो अधिकतम तापमान रही 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कल के अनुमानित तापमान की बात करी तो अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। तो किसान भाई देखिए, समय के साथ चलना बड़ा जरूरी है, और समय कहते कि राउर मन से विदा लहल जाए, काल फिर भेटाल जाए, आज चलल जाए, राम राम।

दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रही हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में मैं रितिका आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, रात के 8 बज चुके हैं और इस ढलती हुई शाम के साथ ही वक्त हो गया है आकाशवाणी के उस डिजिटल गलियारे में चलने का, जहां आपकी चाहत और हमारे सुर एक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे आकाशवाणी के इंस्टा पेज पर जो इंस्टा फरमाइश का पोस्टर लगा था, उस पर आपके नाम और पते के साथ आपकी मोहब्बत से भरी फरमाइशों की बहार आ चुकी है। तो आपके उन सारी फरमाइशों को समेट कर अब मैं आ गई हूँ आपके पास, और अब से लेकर के रात के 8:45 तक का वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी उन खास फरमाइशों के नाम रहेगा। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अभी आप सुन रहे थे सूरमा फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज़ दी है दलजीत दोसांझ ने। संगीत निर्देशन था शंकर महादेवन एवं एहसान नूर का और गीतकार थे गुलजार। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है हमारे श्रोता नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सुपान ताड़े एवं आशीष मुरहेकर। बोईसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू बीमा, वैभवी विनोद, विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति एवं भूमिका अरोड़ा। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमसूल कमर राही। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम, शिखा एवं शेफाली। भूरसुदा छत्तीसगढ़ से भगवानी सेन, संतोषी, चिराग एवं गजेंद्र सेन। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से जगदीश ठाकड़, नायमा, रंजूबाई, युवराज सिंह एवं शिवांगी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान छीपा एवं पूजा परिहार। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद, सुराज अख्तर, जस्मीन, शकीला, हीना, रजिया, सुल्ताना एवं परिवार के सभी सदस्य। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल एवं नफीसा परवीन। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं बरेली की बर्फी फिल्म का ये गीत। आवाज़ है आर्को की।

बरेली की बर्फी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश एवं प्रीतेश संघई, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे एवं मोहम्मद हसनैन पवार, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक एवं परिवार के सभी सदस्य, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा एवं स्वीटी छाबड़ा, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह एवं पल्लवी शाह, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ा, माफ कीजिएगा जिला झालवाड़ा झालवाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म भारत से। आवाज़ है अभिजीत श्रीवास्तव की, संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

श्रोताओं, आपकी फरमाइशों का इंतज़ार हमारे इनबॉक्स को भी रहता है, क्योंकि आपका हर एक नया मैसेज एक नया नगमा लेकर आता है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कोई जाने ना फिल्म से। आवाज़ है लखविंदर वाडली एवं नीति मोहन की, संगीत निर्देशन है रोचक कोहली का और गीतकार हैं मनोज मुंतशिर।

कोई जाने ना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी एवं ऋतिक, राज पैलेस मऊनाथ भजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन, शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश एवं प्रियंका, आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही एवं महराज जहां, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव एवं ज्योति यादव, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया एवं अपार ढेंगिया, बटेडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग एवं तानिया नारंग, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार एवं परिवार के सभी सदस्य, भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना, पूजा, आरती एवं सुनीता, कुम्हारगली श्रीरामपुर से

अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, पूनावले पुणे से अजय सोनमणि, करिश्मा, अविका एवं विशाखा सोनमणि। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में आइए सुनते हैं अगला गीत, भारत फिल्म से। आवाज़ है अभिजीत श्रीवास्तव की, संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

श्रोताओं, पहले का वक्त जब हम चिट्ठियों में अपनी पसंद लिखकर हफ्तों इंतज़ार करते थे, लेकिन आज दौर बदल चुका है। अब आपकी पसंद बस एक क्लिक, एक कमेंट या एक डीएम की दूरी पर है। इंस्टा फरमाइश महज एक शो नहीं है, बल्कि एक डिजिटल पुल है जो आपके स्मार्टफोन के इनबॉक्स को आकाशवाणी के इस माइक से जोड़ता है। जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मिस्टर एंड मिसेस माही से। आवाज़ है मोहम्मद फैज़ की, संगीत निर्देशन है जानी का और गीतकार हैं समीर अनजान। इन दोनों ही गीतों को सुनने की मिली जुली फरमाइश हमें मिली है। हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार एवं हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी एवं प्रांजल राय। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली एवं आरती अरोड़ा। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एवं शिवांश वर्मा। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार एवं सौरभ डूडी। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता एवं अंकिता सिंह। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र एवं उमेश मिथिलेश वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदही हंसिका, अंकिता। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट। फजिलका पंजाब खेड़ा से भूषण, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी एवं टिवानशी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय।

मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में। तो चलिए अपने इंस्टा इनबॉक्स से निकालते हैं एक और खूबसूरत फरमाइश। उससे पहले जानते हैं अभी जो आप गीत सुन रहे थे उसके फरमाइशकर्ता के नाम। चुनारा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम श्याम, रवि आर्यन, रंजीत एवं रामानंद कुशवाहा। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल, लवली, रजत, लव एवं कुश खन्ना। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या एवं आरव खुराना। पंजाब से भकर मोहम्मद, हफीजुर रहमान। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन एवं माहिरा नूर। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत स्त्री टू फिल्म से। आवाज़ है अमिताभ भट्टाचार्य, सचिन जिगर एवं शिल्पा राव की।

स्त्री टू फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम अनुज नगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया काव्या एवं मंजू राजवाड़े, ग्राम सिद्धमा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका, शिवांश, राम भरोसे पैकरा, नरेश सिंह एवं परिवार के सभी सदस्य, भाटापारा से रोहित, जयलक्ष्मी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक एवं सीमा साहू, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, मीर साय, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नैन प्रकाश, शारदा, लकी, सीताराम, सितंबर, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, पांडे राम राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, नूरसाय राजवाड़े, कविता मरकाम एवं आरती मरकाम, लुंड्रा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रथम, प्रफुल्ल, कैरव, गर्वी, अनुज, सुनैना दास एवं वेद कुमार, ग्राम पड़ौली पोस्ट धौरपुर विकास खंड से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी एवं हसन सिक्का, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, माफ कीजिएगा, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल पंजाब से रामटेके, यशोधरा रामटेके, शव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद एवं पोपो रानी।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश बस यहीं तक। कार्यक्रम से अब मुझे यानी अपनी रेडियो साथी रितिका को दीजिए इजाजत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब आप

0: सुनेंगे समाचार संध्या एवं इवनिंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया।

0: सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध

0: रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल।

शामिल है। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजोदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान।

0: पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं। हाँ। बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोह बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला ये सुन सकते
1: हैं। हाँ, अभी तो शुरू है कि साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम किसान वाड़ी।
2: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
3: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
2: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
3: क्या 230-600?
2: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
3: पक्का?
2: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
4: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत, बाजीगर फिल्म से। आवाज है विनोद राठौर एवं अलका याग्निक की, संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और गीतकार हैं गौहर कानपुरी।

विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में बाजीगर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम चित्रपट संगीत बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी रितिका। दोस्तों, वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन दिल की बात बयां करने का जरिया आज भी उतना ही खूबसूरत है। देखिए ना, जब आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर बैठकर दुनिया के कोने कोने से हमें मेल लिखते हैं, तो वो सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं होते, आपकी उम्मीद होती है, आपका प्यार होता है, अपनी फरमाइशों को, अपने नाम को आकाशवाणी के माइक तक पहुंचाने का। और आज भी आपके नाम और फरमाइशों से आकाशवाणी का मेल बॉक्स रोशन हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं फरमाइशों का ये खूबसूरत सा सफ़र। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर और उदित नारायण की, संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल नारायणी नुमेश नेहा एवं वान्या सिंगरौल पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति एवं भूमिका अरोड़ा लच्छनपुर जिला बलौदा बाजार से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश एवं मुकेश ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा सुनीता हर्ष कुमार विनीत कुमार एवं कृष्टि पटवा जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा अर्चना अनुज आयुषी रमेश चंद्र शेख मूसा एवं राजकुमार सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश एवं जगताप दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले नवदीप येले एवं विश्वदीप येले पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर एवं कुशल शाह ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास देवांगन रीता दास जतिन कुमार चंद्रावती सिंह नूर साय राजवाड़े समीर सिंह मरावी एवं सोनू सिंह मरावी ग्राम उच्च भट्टी बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी मधु आशी शिवन्या अनु गोस्वामी जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम विशाल प्रिया दिशानी एवं निमित आहूजा कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगला गीत शामिल किया है आजा नचले फिल्म से आवाज़ है सोनू निगम एवं श्रेया घोषाल की संगीत निर्देशन है सलीम सुलेमान का और गीतकार हैं जयदीप साहनी एवं पीयूष मिश्रा

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसे सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र एवं रौनक सेन। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार एवं युवराज साहू। अरार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश एवं दीपेश वर्मा। ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छींदा, जसवीर, जस्सी, सीता एवं गीता। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी एवं कलावती सोनी। भाटापारा से रोहित एवं लक्ष्मी। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलौदा। छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, पूजा राधिका प्रभा तामुरिया एवं अल कबीर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति एवं ओजस्वी यादव। लखनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज एवं तिरुपति साहू। जालंधर सिटी पंजाब से सोनू रवि।

आज गुलशन एवं लकी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़ एवं हसन नवाज़, कोरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति, पंकज, सुष्मिता एवं दीपिका साहू। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हम दिल दे चुके फिल्म से। आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति एवं कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है स्माइल दरबार का और गीतकार हैं महबूब।

हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना एवं यश मंसूरी, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश एवं राहुल साहू, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल एवं पुष्पा ताई, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति निधि एवं निखिल वर्मा, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी एवं प्रियांशी मनवर, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, वसुधा वज्रसेन एवं आदेश कुमार काले, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मण, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी एवं दिशा गोस्वामी, मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा, लूलू एवं रितु सिंह, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा एवं इंदिरा शर्मा, बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम कमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची एवं तनु कमरकर, ग्राम सिद्धमा बाजारपारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर, दीपिका, शिवांश, राम भरोसे पैकरा, नरेश सिंह एवं परिवार के सभी सदस्य, बुलडाड़ा वडशेंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा, दीपाली एवं श्लोक, शास्त्रीनगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया एवं विशाल सपकाल, छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी एवं किशोर गुप्ता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में जोश फिल्म का ये गीत। आवाज है उदित नारायण एवं अलका याग्निक की, संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और गीतकार हैं समीर।

जोश फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया झलमिल दक्ष, कुंती मंगलराम रिद्धि एवं सिद्धि प्रजापति, डाकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदुरकर, गांव जाखौद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक एवं पूजा खटक, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमारी, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन एवं इब्राहिम, खंडवा से राजेश सेन, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली एवं सुरेश नारंग। कार्यक्रम ईमेल की गूंज बस यहीं तक। आज रात हमसे जुड़ने के लिए, अपने खूबसूरत जज्बात ईमेल के ज़रिए हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। और अब कार्यक्रम से मुझे यानी रितिका को दीजिए इजाज़त।

मीडियम बीट 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा।

आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार

0: उत्पादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya, stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur, of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी, बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़। द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal, followed by madhyalaya teen tal.

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।

0: अमेरिका की विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation, in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked